गावन तुदनो साध बिचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़ नर किसर, जुग जुग वेदा नाले।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हरजन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पा।

शैल पत्थर मह जंतु पाए, ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधो जी। सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया।

है मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर करतल तरिया जन नानक बल बल

ओ पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुरजी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतु

सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ

जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी।

जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तेत सर्वरड़ पहले निवासा पाणी पावक तिन्हें किया।

कट कट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत

जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़

केह विद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कह भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आदि जुगादि स्वरूप।

दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरहु, ताके ताप तनक मह हरहु, रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई, दुष्ट छाह छव

दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस दिख

मनोकामना मनोभावना संपूर्ण करनिया तन मन धन दे नाल कीतियां सेवावां थाएं पौनिया गरीब नवाज आप जी का पावन पवित्र फरमान है धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का इह सुआउ जन कै संग चितावै नाउ दे मां वाका अनुसार अज आप जी के दरों घरों वरसाए हुए साहिब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जीओ आप जी के प्यारियां विचों भाई साहब भाई दया सिंह जी तिन्हां दा अज जन्म दिहाड़ा है सो उन्हां दे पावन जन्म दिहाड़े नूं याद करदिआं गरीब नवाज आप जी के चरणा विच अरदास बेनती जोदड़ी आप जी ने कृपा करनी समूह गुरसिखां दे जीवन तों सोझी बख्शिश करन दी रहमत करनी उदम बख्शिश करना रहमतां करनियां सतगुरु जीओ दरों घरों नवाजना रहमतां करनियां गरीब नवाज इस वक्त दीवाना दी संपूर्णता नूं मुख रखदे आप जी के हजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते संगत विच वरत्या प्रसाद जो जी सके सो आप जी का पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे कृपा करो पावन हुक्म बख्शो जी उपरंत अगले दीवान सजाउण दी आग्या होवे सुख होवै नाम चिते आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा गया।

अमै दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस

0: आए गुरु इतनी सेवा प्रवान करनी जी फलां चुकिया आवन सतारियो भाई सब भाई नवनीत सिंह पासों पावन पवित्र चल रही लड़ीवार कथा सरम करी जी बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह
0: धन गुरु नानक।

ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਥੰਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਖੰਭ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਣ ਆ ਜਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚਿੰਤਨ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੇ, ਜਗਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀਰਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਸ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਦੋ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਬੈਸਨ ਪਾਈ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੜਾਈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ।
जिथे लोड़ नहीं तू उथे अपने आप नू सेवादार बना के सेवादार बन के जा हंगता विच करना है वो तेरी सेवा परवानी दा मतलब ये नहीं भी गुरु घर आके सी क्योंकि गुरु घर भी संगता हुंदियां ने गुरु घर भी इकट्ठ हुंदा है इत्थे तां असी करनी ही करनी है इहदे च कोई शक नहीं इह तां साडा गुरु का हुक्म है गुरु का विधान है गुरु ने इत्थों तां सानू तोरना है ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋ ਪਏਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ कोई भुखा मिल जाए कोई प्यासा मिल जाए कोई लोड़वंद मिल जाए माफ करना जे बंदा अठ अठ दस दस घंटे गुरु घर ते सेवा करे ते बाहर किते कोई ऐसा समा आ जाए भी कोई बंदा लोड़वंद मिल जाए प्यासा भुखा होवे ते बंदा उत्थों मुंह मोड़ ले आखे मैं ते गुरु घर सेवा करके आ गुरु ने उह सेवा परवान ने कीती सतगुरु दे घर दे अंदर ते ऐसी ऐसी साखियां ने कि जे लोड़वंद नूं नहीं मिलिया ते गुरु ने उस चीज नूं प्रवान नहीं किया सही गुरु साहब सच्चे पातशाह जी दे जीवन विच साखियां हुंदियां धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह वेले एक सिख बड़ी दूरों गुरु साहब जी दे दर्शनां नूं आउंदा है कई दिन लगते ने ते उह सिख अपने इलाके चों माखियो चो के लिआउंदा है मक्खी का शहद लिआउंदा है बड़ा सोहना छत्ता सी देसी मक्खी का शहद मिट्टी के भांडे विच भर के लिआ रहा कई दिन लग गए उस जत्थे विच एक गुरु दा पहुंचिया होया सिख सी जदों उहदे मन नूं जी कीता उहने उस सिख नूं कहा भाई शायद भाई कट्टू सी उहने कहा भी मैनूं शायद खवा थोड़ा माखियो खवा वेखीए ते सी किन्ना कु स्वाद लै किन्ना कु मिठा मेरा मन करदा है उह सिख कहिंदा ना ना इह ते मैं गुरु लई लियाया तेनूं नहीं देना तेरे वास्ते नहीं इतिहास कहिंदा हालांकि शायद सालां बद्दी खराब नहीं हुंदा सालां बद्दी प्यार आए कदी शायद नहीं खराब हुंदा पर कहिंदे जदों गुरु साहिब जी दे सामने लिया तो उन्हें रखिया ना दो तरह इतिहासकार कहिंदे ने एक तां कहिंदे भी सतगुरां ने पहली आप प्रवान कर दिता भी जदों मैं मंगिया सी उदों ते तू दिता नहीं ते कुछ कहिंदे जदों ने उत्थे मटका खोलिया ते उहदे विच किरम चल दे प्रतीत होए भी उहदे विच कीड़े चल रहे ने तां गुरु साहिब कहिंदे तू जदों मंगिया सी उदों दित्या नहीं ते प्रवान हो गया आप प्रवान हो गया कहिंदे जी तुसी कदों मैं तां हुण आया तुहाडे कोल कई दिनां दा पेंडा घत के ता फिर सतगुरां ने कहा भी जदों सिख ने मंगिया सी सिख दे रूप विच उदों मैं ही तां मंग रहा सां इहदा भाव है साखियां दा मतलब है सिखाणा कि गुरु जेड़ा है गुरु दसदा है भी जिथे मानवता नूं लोड़ पए तुहाडे सेवा दी उत्थे निष्काम होकर अज इक होर रूप चलिया होया क्योंकि हुण ताईयां हर थां ते आ जांदियां कमियां आ जांदियां हुण सेवा दी जदों गल हुंदी भावें मानवता दी जिथे लोड़ होवे लोक बेलोड़े होके भी चल पैंदे ने भी साडा नाम हो जाए सानू लोक जानन लग जाए सेवा दा ते मतलब ही नहीं सेवा दा ते कंसैप्ट ही नहीं भी तू करे ते तेरा नाम होवे ए ते किते भी नहीं सेवा दे नां ते फिर अज तां ऐसी ए वबा चली हुई है भी मनुख ने एक तरह दा ढंग बना लिया ए सानू मनना पएगा सेवा दे नां ते एनजीओ बनिया हुईयां ने ट्रस्ट बने हुए ने किसे लोड़वंद दी इहनी भी मदद नहीं हुंदी मदद हुंदी है पर मदद दे नां तो ज्यादा बिजनेस हुंदा है सेवा कीती जांदी है दस बंदियां दी सेवा दस बंदियां दी लोड़ पूरी कीती जाएगी पर हजारां दा अपने कोल रख लिया जाएगा लोकां विच प्रचारिया जाएगा भी असीं सेवा कर रहे हां ते लोकां तो माया इकट्ठी करके अपने सुख आराम लै रहे बड़े बड़े लोग ने खास करके इंडिया की धरती से बड़िया ऐसिया एनजीओ चल रही ने ठीक है जो सही कर्म है उन्होंने माड़ा नहीं आख्या जा सकता भी लोड़वंदा की निकरिया की बेअसरिया की मदद करनी चाहिए हुंदी भी है पर उस आई हुई माया तो उस आई हुई माया तो अपन अयाशियां अपने लिए साधन एकत्र कर लैने अपने लिए वड्डे वड्डे साधन बना लैने ते ए ता फिर ता मतलब है भी संगत दी माया नू बंदा किस रूप विच वरत रहा है कि अपने निज स्वार्थ लई नहीं वरत सकते नहीं वरत सकते हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दी धरती ते दो ऐसे पुरख हुए ने जिन्ना ने सेवा दी मिसाल कायम कीती है
जे अजोके समय च थोड़े जे समय च वेखिए पिछलियां गल्लां छड्डीए हिंदुस्तान की धरती ते आजाद भारत तो पहला जेडे सन सिख पूरन सिंह जी भगत पूरन सिंह जिन्हां आखने जिन्होंने पिंगलवाड़ा स्थापित किया आजादी तो बाद जे कदी उन्हां दा जीवन पढ़ो ना उन्हां दे जीवन दे विच इन्नी मशक्कत इन्नी काल एक प्यारे तो उन्होंने सेवा शुरू की सी ते कदी भी उन्होंने उसनू कोई शरीर लूला लंगड़ा नहीं समझिया उन्हों गुरु की सेवा समझी गुरु का हुक्म समझिया ते आप सारी उम्र साधारण जिंदगी बतीत की इथों तक कि हजारा लखा रुपया भी उन्होंने कोल आउन लग गया सी अज तां बड़ी कृपा है पर एक भी रुपया उन्होंने अपने निज स्वार्थ लई नहीं वरत्या यह है सेवा। दूसरे इस्लाम दे विच पाकिस्तान की धरती ते होए ने ईदी उहदा नां ईदी है उहदा ट्रस्ट चलता है उन्हें एम्बूलेंस भी रखिया सन एयर एम्बूलेंस भाव कि जहाजा ते हैलीकाप्टर ते लोगों की सेवा जिथे एमरजेंसी मेडिकल की लोड़ पैंदी सी उहदे ट्रस्ट कोल जहाज सन एम्बूलेंसां सन पर वो आप इन्ना साधारण सी कई थावां ते पैदल जां साइकल ते जांदा सी जे किते मानवता की सेवा ते लई उन्हूं साधन वरतना पैंदा सी उदों वरतदा सी अपने निज स्वार्थ दे लई उन्हें कदी भी किसी चीज़ नूं नहीं वरत्या इन्हूं सेवा कहिंदे ने। जिथे अपना निज त्यागिया जाए ते जिथे बंदा सेवा ही इस करके करे भी मैं सेवादार बन के वड्डा सेवादार बन के करा ते मैनू वड्डे मान सन्मान धन मिले ते उहदे नाल नाले मेरी जिंदगी चलती रहे ते बिजनेस हो गया ना कि जिवें बिजनेसमैन बंदे अपना बिजनेस करदे ने उहदे विच जिहड़े लोग उहनां नाल जुड़दे ने उहनां नूं उह पार्टियां भी देंदे ने उहनां दे नाल गैदरिंग भी करदे ने भी उहनां नाल संबंध बणिया रहे बिजनेसमैन माइंड है ते कि लोगों की सेवा 10-50-100 की कर देनी विखा देना पर लखां दा अपने हाथ विच रख लेना ते उहदे नाल अपनियां आयाशियां अपने परिवारां नूं पालना है ये सेवा दा कंसैप्ट नहीं ये सेवा गुरु नूं परवान नहीं। गुरु नूं सेवा केड़ी परवान है जिहड़े गुरु घर विचों असीं सिखदे हां जूठे भांडे इत्थे असीं मांजने दा मतलब है जे कोई तैनूं लूला लंगड़ा जे कोई तैनूं लोड़वंद बीमार की सेवा करन दा मौका मिल जाए ते तू उत्थे कोई गुरेज नहीं करना नफरत नहीं करनी जिवें गुरु घर बिना वितकरे तो तू जूठे बर्तन मांज देना ना उसे भी समझना भी गुरु दे सिख गुरु दा प्यारा ही है भावे वह सिख भी ना हो मनुख हो कोई जीव हो सेवा दा तेनू समा जे बन गया तू समझना गुरु ने समा दिता भुखा मिल जाए प्यासा मिल जाए कोई लोड़वंद मिल जाए जिदा तेनू लगे कि इहदी सेवा सेवा मैं करनी है गुरु का हुक्म वो सेवा है जो तू अपने गुण अंदर धारण किते उन्हां गुणां नूं संसार विच प्रचारना है फिर ऐसी सेवा गुरु साहब की कहिंदे विच दुनिया सेव कमाई है ये है असल कमाई ये जिन्नी तू कमाई कर लेंगे तेरी कमाई कदी भी व्यर्थ नहीं जाएगी बाकी दुनिया की कुल कमाई बंदा करदा घटदी जांदी है एक हद ते जाके हुण तां बंदा कहिंदा भी मैं इन्ने कमाला पर एक समय ऐसा ना उदू बाद वो घटनी शुरू हो जानी वंडियां पैनियां शुरू हो जानी है फिर बंदा डरदा भी है भी मेरा खो ना लए लुट ना लए मिट ना जाए वो फिर कमाइयां घटदियां जांदियां ने पर यह कमाई गुरु साहब जी कहिंदे कदी नहीं घटदी जदों कोई मनुख सेवा ते सिमरन की कमाई करदा है यह कमाई मनुख की सदा ही बरकरार रहिंदी है वधदी रहिंदी है एदे विच घाट नहीं ए दून सवाई हुंदी है जे उस भावना नाल कीती जाए ते जेड़ा करदा है गुरदेव पिता महाराज जी कहिंदे फिर सच्चा सतगुरु सेव ए है सच्चे सतगुरु दी सेवा इस तरह कहिंदे भाई सच्चे सतगुरु नूं सेव आराध सेवा कीचै नाम त्याई है ए दोवें चीजां कठियां ने भी सेवा भी करनी है नाम भी त्याना है नाम त्या के पता लगना है कि यह मनुखता जिहड़ी है उहदा ही रूप है ते फिर उन्नू सेवा दे विच उहदा रूप जान के सेवा करनी उन्नू ही समझना होर कोई सेवा नहीं बस उन्नू ही जानना उन्नू ही पालना उहदी ही हर गल रजा विच रहना सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया सच नू संभालिया अपने हिरदे विच परमेश्वर नू संभाल लिया सेवा दे जरिए सेवा राही इस करके सिख पंथ विच एक संपर्दा भी चल रही सेवा पंथी संपर्दावां बड़ियां चल रही ना सेवा पंथी संपर्दा ही उत्थों चली गुरु साहब सच्चे पातशाह दतार पिता महाराज जी ने
दसवें पातशाह जी ने जदों सिखां नूं बख्शां वंडियां, उन्हां बख्शां दे विचों जिवें भाई कन्हैया जी उह सेवा पंथियां विच आउंदे, उन्हां दे अगे बहुत सिख ऐसे जिन्हां इन्नी सेवा कीती दुनिया दी, किवें उन्हां समयां विच पोथियां लिख लिख के, बाणी लिख लिख के, जां होर संसार दे भले दे कारज करके किते खूह लवा देने, किते दरिया बना देनिया, दरिया बुननिया पैंदियां सी, क्योंकि संगत दे बहण वास्ते अज वाला माहौल नहीं सी, संगतां दरिया ते जां गलीचियां ते बहण हत्थी हत्थी बुनने पैंदे सन, झाड़ू हत्थी बनाने पैंदे सन, जिन्हां नाल गुरु घर जां धर्मशाला साफ करनियां, उह सारे सेवा पंथी अपने हत्थां नाल बनांदे सन, पक्खियां बनानियां जिन्हां नाल संगत नूं पक्खे चलने, यह सारिया महान सेवावां सन ते लोकां दीआं सेवां, लोक सेवा कीती जांदी सी। गुरु साहिब सच्चे पातशाह दतार पिता महाराज जी ने सेवा तो ही रीझ के अपने सिखां नूं गुरियाई दित्ती है। हर गुरु साहिब जी नूं जदों भी गुरियाई मिली है सेवा तो रीझ के मिली है, ते सेवा केड़ी भाणे वाली, ये नहीं भी वह कही है भी कम जिमें असी वेने भी गुरु साहबाना के कुछ पुत्रा ने कुछ सिखा ने सेवा तो बड़ी की, पर नाल अपना मान नहीं छड़िया, हंगता नहीं छड़ी, बाबा पृथ्वी चंद जी वर्गिया ने होर अनेक ने, तो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने प्रवान नहीं किया, भावें सेवा दिन रात करते। सेवा का मतलब जिथे सच संभालिया, जिथे सच न संभालिया भी मेरा कुछ भी नहीं, मेरे ते तरस करके गुरु मेनू इस जोगा करदा पिया है, अपना आपा निवार देना, अपना आपा त्याग देना, ते फिर की हुंदा है, ऐसी सेवा की करदी है, अंत खलोया आए जिस सतगुर अग्गे घालिया, कहिंदे वो अग्गे साडा आ जांदा है, जो असी सतगुर जी दे दर ते घालिया हुंदा है ना, कमाया हुंदा है, कीती हुंदी गुरु दी सेवा, थोड़ी कीती होवे, बहुती कीती होवे, कीती प्यार नाल होवे, भावना नाल होवे, जिन्नी कीती होवे, अंत खलोया आए वो अग्गे आके खलो जांदा है। आपां पंजाबी विच कई वारी बचन पढ़दे हां भी जिद्दां जदों किसे दा कोई समा माड़ा हो जाए चल पे, तो उस माड़े समय विच वो संभल जाए ना, जां उहनूं कोई ऐसा वाहिगुरु की कृपा मिल जाए, तो यह शब्द वरत्या जांदा अक्सर पुराने बजुर्ग मिलते सन, कोई पुराना अग्गे आ गया, दोवां चीजां लई वरत्या जांदा कि इहदा कोई पुराना अग्गे आ गया जिहड़ा इहनूं इहने बख्श दिता है, यह बख्शिया गया भी मौत के मूंह चों भी आ गया, एडा वड्डा रोग इहनूं लगा सी जां एडा वड्डा इहदे ते मुसीबत बन गई, पर वाहिगुरु ने हथ दे के रखिया, इहदा कोई पुराना कीता अग्गे आ गया। जे चंगी भला जीवन होवे फिर बंदे दे बुरे दिन आ जाए उहनूं भी कह दिंदे भी इहदा कोई पुराना अग्गे आ, भाव है कर्म साडे नाल चलदे ने, पर जो भी असीं घालिया है, गुरु साहिब जी कहिंदे अंत खलोया आए, इत्थे चंगे संदर्भ विच लिया भी गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी दे दर ते कीती हुई सेवा, गुरु नूं रिझाण लई कीता होया कर्म जदों भी मनुख करेगा उस समय हो सकदा उहनूं उहदी कदर ना होवे, उस समय हो सकदा सानूं पता ना लगे भी इहदा फल की मिलना है, पर दाता जी कहिंदे जदों समा आएगा उह तिल मात्र घालिया भी तैनूं निहाल कर देगा। जो भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने कीता होया कर्म जिहड़ा कई वारी पता नहीं लगता भी असीं कहीए मन बिरती एक वारी जोड़ के जिवें गुरु घर बह के आपां भी दो चार मिनट वाहिगुरु चार दीए, गुरु साहिब जी का नाम लै ली, कोई शब्द पढ़ दीए, जां कोई तिल मात्र असीं जोड़ियां दी सेवा, बर्तना दी सेवा, लंगर दी सेवा कर दीए, सानूं लगदा भी थोड़ा समा कीता है फल कोई होएगा। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਤਨਕ ਸੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤ, ਮੋਲ ਕੀਏ ਤੇ ਦਮਕਨ ਭਰਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਹੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਗ ਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਨਗੀਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਲੀ ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤਨਿਕ ਸੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੋਲ ਕੀਏ ਤੇ ਦਮਕਣ ਭਰਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੋਹਰੀ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ, ਹੱਥਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੈਗਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤਨਕ ਸੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤ, ਮੋਲ ਕੀਏ ਤੇ ਦਮਕਨ ਭਰਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਬਰ ਬਾਂਡੇ ਹੁੰਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾ ਭਾਰ ਕੱਛ, ਆਗੇ ਜਾਏ ਪਾਈਏ ਲਛਮੀ ਅਪਾਰ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ,
ਆਪਾਂ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਡੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ, ਇੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਉਹ ਚੈੱਕ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਆਗੇ ਜਾਏ ਪਾਈਏ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਪਾਰ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਭਰਿਆ ਉਹ ਜੇਬ ਚ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਉਹ ਜੇਬ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਬੈਗਾਂ ਚ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੈਸੇ ਬਟ ਬੀਜ ਅਤ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਹੋਤ ਬੋਏ ਸਹਿ ਬਿਧ ਕਰੇ ਬਿਰਥਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਦਾ, ਬੋੜ ਦਾ, ਬਟ ਨਾਮੇ ਬੋੜ, ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੋੜ ਨੂੰ ਗੋਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰ ਜਿੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੋੜ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਇੰਨਾ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਬੇਰ ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੀਜ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਫਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਬ ਵੀ ਰੁੱਖ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਟਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਿਟਕ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝਾਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਫਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋੜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਬੇਰ ਜਿੱਡਾ ਗੋਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਜਨੇ ਆ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਫਲਨਾ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਲਵੇ, ਘੜੀ ਮਾਤਰ ਲਵੇ, ਪਹਿਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇ ਮਤਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਖਰੇ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਦਾ ਫਲ ਜੋਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਹੁੰਡੀ ਤੁੜਵਾਇਆ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਂਝ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਛਿਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਹੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਏਡਾ ਨਿੱਕਾ ਬੀਜ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਚਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਮਹਾਤਮ ਗਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਤੋਂ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਘਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਘਾਲਿਆ ਵੀ ਕੁਥਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਦਾ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਘਾਲੈ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਇਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਖਲੋਇਆ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਘਾਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਘਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਜਮ ਕਾਲ ਸੱਚਾ ਰਖਵਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਹ ਘਾਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਮ ਕਾਲ ਜਮਾ ਦੇ ਦੂਤ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚਾ ਰਖਵਾਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜਿਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਮ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ।
पंचम पातशाह जी का बचन असि पढ़ते हैं ना, जिसके सिर उपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै, बोल न जाने माया मद माता मरना चीत न आवै, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भौ किछ नाही जम नहीं आवै नेरे, ओदे नेड़े नहीं आंदे, जो तेरा रंग रत्ते स्वामी जो तेरे नाम विच रत्ते गए, तिनका जन्म मरन दुख नासा, उन्हां दा जन्म मरन मिट जांदा है नस जांदा है, उन्हां दी जीवन दे अंदर कोई भौ नहीं रह जांदा, कोई उन्हां दे जीवन अंदर संकट नहीं रह जांदा, क्योंकि सच्चा रखवाला सच्चा उन्हां दा रखवाला बन जांदा है। वो पहला भी उन्हां नूं डोलन नहीं दिंदा ते अगे भी नहीं डोलन दिंदा, औखी घड़ी ना देखन देई अपना बिरद संभाले, हाथ दे रख है अपने को सास सास प्रत पाले, प्रभ से लाग रहो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई, धन हमारा मीत वो मित्र बन जांदा है, कहिंदे धन है मेरा मित्र जेड़ा हर वक्त मेरी मदद करदा है, मित्र तां उही है ना, मित्र दा मतलब ही है जेड़ा हर वक्त तुहाडे नाल खलोता है तुहाडे दुख विच तुहाडे सुख विच, ते कहिंदे मेरा गुरु मित्र बन गया है, मैं उहनूं धन कहिंदा, धन है मेरा मित्र जेड़ा हर वक्त मेरे लिए खलोता होया है। दतार पिता जी कहिंदे पोहे ना साकै जमकाल सच्चा रखवालिया, उन्होंने पो नहीं सकता जम जिन्हों का राखा सच्चा सतगुरु हो जाता है परमेश्वर हो जाता है, जम लज्जा ए कर भागा लज्जा खा के शर्मशार हो के डर के उत्थों भज जाता है जिथे वाहगुरु के प्यारे ते वाहगुरु की कीर्ति वसदी है, जिथे परमात्मा की कीर्ति हुंदी है ते कीर्ति करन वाले हुंदे ने, जिथे बतार जी कहिंदे उत्थे परमात्मा के प्यारियां दे नेड़े भी नहीं आउंदे, ऐसी उन्हां ते कृपा हो जांदी है। गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया, गुर साखी गुरु दी साखी, गुरु दी साखी गुरु दा ज्ञान गुरु दा उपदेश, गुरु उपदेश नूं जिन्ने अपने हिरदे विच जगा लिया दीवे दी तरह, हुण जिन्ना चिर जगेगा ना दीवा उन्ना चिर भावे प्या होया, दीवे विच तेल है बत्ती है दीवा बनिया प्या भी अपने थां ते है, पर जे बुझिया उहनूं अग ही नहीं लगी, अग नहीं लाई उन्हू माचिस नहीं बाली, तो वह कोई मकसद नहीं हल करेगा, कोई मकसद नहीं हल करेगा, रोशनी जदों रोशनी बालांगे उहदे बत्ती दे नाल अग्न लावांगे ताही वह जगेगा ना बलेगा ताही रोशनी देगा, दीवा बले अंधेरा जाए आप पढ़ने बाणी विच भी दीवा बलन तो बाद हनेरा जांदा है, ते जिथे बलेगा उत्थों हनेरा गायब हो जाएगा। इसे तरह गुर साखी दी जेड़ी गुरु उपदेश दी जोत है वह कित्थे बलनी है, जोतां बाहर तो बालन आले बड़े मिल जाएंगे, कई जोतां बलदियां बाहर, असी जोतां बालदे भी हाँ, पर दतार जी कहिंदे जेड़ी जोत बालनी है वह केड़ी है, वह अंदर बालनी अपने अंदर घट अंदर जोत जगानी है, गुरु शब्द तेरे अंदर बले तेरे अंदर जगे, सतगुरु शब्द उजारो दीपा, बलदा होया दीवा गुरु का शब्द पर अपने अंदर रखता सी, जिथे रहेगा उत्थे रोशनी करेगा ना, दीवे का तो सुभा है, उदा कोई अपना मुकाम नहीं हुंदा, दीवे का कोई धर्म नहीं हुंदा, कोई कहे भी मुसलमाना का दीवा हिंदुआं का दीवा ईसाइयां का दीवा, दीवा दीवा है, वह जिथे भी जाए जलेगा बलेगा उत्थों ही हनेरा गायब करेगा। इसे तरह गुरु उपदेश गुरु बचन शब्द वह यह नहीं कहेगा भी कोई सिख कहे भी गुरु का शब्द मेरे लिए है मैं ही पढ़ांगा तो मेरा ही हनेरा दूर होएगा दूजे लिए हनेरा कायम हो जाएगा, नहीं, शब्द शब्द है वह जिस भी हिरदे विच बल जाए जिस भी हिरदे विच टिक जाए उत्थों हनेरा गायब हो जाएगा अज्ञानता तम मिट जाएगा। इस करके दीवे नूं अंदर बालीए घट दे अंदर बालीए हिरदे विच बालीए जदों बलेगा फिर अज्ञानता मिट जाएगी तम निकल जाएगा हंकार निकल जाएगा ममता मोह निकल जाएगी। पर जिन्हां दे कोले समझ नहीं वो हाथ विच दीवा रख के भी डिग पैंदे, दीवा बालिया बाल के दीवा आपां राह वेहने आ ना, पर जे कोई बंदा हाथ ते दीवा रख के फिर भी खूह च डिग जाए उहनूं की आखांगे। बाबा कबीर जी ने आख्या बंदे कोल गुरु दी बाणी होवे सेवा होवे सिमरन होवे चंगे गुण होण पर फिर बंदा बुराइयां विच डिगदा जा रहा दा मतलब की है, मन जानत सब बात जानत ही औगन करै
काहे की कुसलात, कुसलात कहते की सियानप है, की चलाकी है बंदिया तेरी, तू अपने आप नू सारी दुनिया तो समझदार मनना है, पर काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं पर है। हाथ विच दीवा लैके खूह च डिगण डिया, किसे कोल दीवा ना होवे, किसे कोल अखां दी रोशनी ना होवे, वह डिग जाए ते बंदा हमदर्दी भी करदा भी विचारे कोल रोशनी सी, हनेरा सी, वेख्या नहीं उन्हें, पर कहिंदे जिदे कोल दीवा सी, जिदे सिर ते इह जिम्मेवारी सी कि उन्हें आप भी बचना सी डिगण तो, ते अपने काफले नू भी बचाना सी, पर वो आप ही डिग गया। ते फिर जदों काफले दा सरदार ही उजड़ जाए जां लुटिया जाए तो फिर काफला कितने बचता है। इसे करके जदों कौमां दे सरदार विकने शुरू हो जान, अपने आप नू वड्डे आखण वाले, धर्मी अखवाण वाले अपने आप नू विकारां विच डिग जान, ते फिर उत्थे कौमां कितने बचदियां ने, इंसानियत कितने बचती है, क्योंकि उहदे पिछे लगी हुंदी है, उहदे सुभा पिछे चलदी है, ते उहदे अनुसार उह वी खूह विच डिगदे हैं। लोकां दी तां किसे विद्वान ने कहा लोकां की भेडा चाल चलते के पछ चले, कहते भेडा चाल है, तुरदे दे पिछे तुरदे ने, नहीं मेंदे भी जा किधर नूं रहा, खूह वाल जा रहा, खाई वाल जा रहा, किधर जा रहा, ये नहीं मतलब, बस भीड़ वेखी ते तुर पवो, जिवें भेडां दा अजड़ तुरदा, कहिंदे इस तरह तुर पैंदे ने, भावे वह खूह च डेगदे अगे जाके, ये समझना ही नहीं तुरन तो पहला, यह तो भेडां दे काम ने, यह तो इजड़ां दा काम है, भी तुरियां जा रही जिधर नूं चली जांदे, बंदे दा मनुख दा यह काम नहीं, वह तो वेखदा, वह भीड़ नहीं वेखदा, वह विवेक नाल वेखदा भी किधर जा रहा है, ये कारवां किधर जा रहा है, उजाड़े वाले पासे जा रहा है, तो मैं क्यों जावां, मैं तो उस राह ते तुरना है जिथों बचाव होवे, भावे मैं कल्ला ही तुरां। सो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कहिंदे जिन्हां अपने अंदर गुरु प्यार दा, गुरु ज्ञान दा दीवा बाल लिया, उन्हां नूं तां फिर जम भी लुट नहीं सकदे, विकार भी लुट नहीं सकदे, वह गुरु की कृपा सदका गुरु ज्ञान दे बदौलत जिहड़ा है वह इन्हां तों बच जांदे ने, इन्हां नूं पोह नहीं सकदे, उन्हां तों बचा कर लैंदे ने अपना। पर जिहड़े हिरदे ते घट दे अंदर दीवा नहीं जगदा, जां जिन्हां ने हथ च जगा के भी अखां बंद कीतियां, गुरु साहिब ने उन्हां नूं मनमुख कहा, मनमुख विन नावै कूड़ियार, कहिंदे जिन्हां दे अंदर विन नावै, ज्ञान नहीं, सोझी नहीं, वह कूड़ियार ने, वह झूठे ने, बाहरों भावे किन्ने भी सच्चे बने होण, फिर बेतालिया, बेताला शब्द बाणी विच बड़ा आया, वैसे राग नाल संबंधित हुंदा भी जदों ताल वजदा जिहड़ा राग दे नाल ना वजे, ताल तो बाहरा हो जाए, पर असल विच बेताल जिहड़ा है बुरियां आत्मावां नूं कहा जांदा है, उह क्योंकि उन्हां दा अंदर मर्यादा नहीं ना रहिंदी, ताल दा अर्थ है मर्यादा विच रहना, संगीत दा अर्थ है मर्यादा विच रहना, ते ताल दे विच शरीर दे विच असीं आ, शरीर दी मर्यादा है, पर जदों कोई शरीर तो बाहरा हो जाता बेताला हो जाता, उहदी कोई मर्यादा नहीं रहिंदी, बुरियां आत्मावां नूं बेतालियां क्या है, बेताल है, ते गुरु साहिब ने कहा वह भी फिर फिर बेतालिया, वह भी इसे तरह फिरते ने जिवें भटकियां हुई आत्मा फिरदियां ने ना, जिन्हां दे कोल गुरु ज्ञान नहीं, गुरु सोझी नहीं, वह कुड़ियार होके झूठे होकर के रहिंदे शरीर च ने, पर इस तरह फिरते ने जिवें बेताले फिरते ने, जिन्हां की कोई पुछ पड़ताल नहीं, धक्के नाल ही पशु मानस चम पलेटे, कहते है मानस, मानस का चम है पशु, मानस चम पलेटे, पर उन्हें चम पशुआ का नहीं लगा, उन्हें चम जेड़ा है वह बंदिया लगा, शरीर की त्वचा मनुखा वाली हुई है, शकल भी मनुखा वाली है, पर कर्म नहीं मुखा मनुखा वाले, जेडे अक्सर असी शब्द पढ़ते हैं करतूत पशु की मानस जात, की जात मानसा की है पर करतूत नहीं मानस वाली, क्योंकि मानस की करतूत ते सी भी मानस परोपकारी है, सच नाल जुड़न वाला है, नेकिया नाल जुड़न वाला है, परोपकार नाल जुड़न वाला है, पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया, कहिंदे अंदरों चम पशु बाहरों काला हुंदा है, पर कहिंदे जिहड़े अंदर दे काले ने वह शरीर करके भावे मनुख की चमड़ी विच रहिंदे ने, पर असल विच वह मनुख नहीं, वह पशु ही ने, पर उन्हां नूं सिंग पूंछ नहीं है, वह जिहड़े पशुआं वर्गे कर्म ने, उन्हां जिन्हां कोल ज्ञान नहीं ना, परथर जोगी ने वैराग शतक विच जिहड़ा एक सलूक कहा, वह कहा जिहड़े मनुख नूं जिस मानस नूं सच दा ज्ञान नहीं, वह पशु समान है, फर्क की है, कहिंदे बस इन्ना को फर्क है कि पशु दे सिंग ते पूंछ हुंदी है, ज्ञान ही ने मनुख दे अंदर कोल पशु वालियां सारे औगण गुण हुंदे ने, पर उन्हां नूं सिंग पूंछ नहीं हुंदे, वह समझो सिंगां तो वहीने
पूंछ तो विहीने पशु ही हन पर मानस दे रूप विच हन। सबदो वरतै सच सच्चा शब्द निहालिया, जिन्ना दे उत्ते गुरु दी कृपा हो गई सच नाल जुड़ गए, सब पासे उस वाहिगुरु दा हुक्म वरतदा है, सच हुक्म रूप विच वरतदा है, शब्द नाल जेडे जुड़ गए निहाल हो जांदे ने। नानक नाम निदान है पूरे गुर देखा लिया। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कृपा करदे ने कि हे नानक आख उस अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम निदान है, खजाना है, बेशकीमती खजाना है। जेडे गुरु दे नाल जुड़ के काल कमाई करदे ने ना, उन्हां दी मशक्कत नूं गुरु कुथाए नहीं जान देंदा, गुरु उन्हां दी मशक्कत दा उन्हां नूं देंदा है। पूरा गुर विखा लिया अपना दर विखांदा है, गुरु बख्शिश उन्हां नूं दिसदी है, गुरु दी नजर उन्हां ते वापरदी उन्हां नूं प्रतीत हुंदी है। जिहड़े गुरु दी कृपा सदका सेवा ते सिमरन दे नाल जुड़ जांदे ने, सतगुरु जी कृपा करन सानू भी अपने अंदरों करो नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजन जी। सतगुरु दतार पिता महाराज जी समूह संगत दियां हाजरियां दर प्रवान करन। आओ प्यार सहित भाई साहिब भाई सतनाम सिंह जी अते उन्हां दे जथे पासों अमृत बाणी दा कीर्तन सरवण करिए जी। भुल्लां चुक्कां दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

विश्वे चसया कड़िया पहरा चेती वारी माहो हुआ सूरज एक और रोचन एक नानक करते के केते वेश राग धनासरी मोहल्ला पहला गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तूप मलया लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पवकणना तेरी आरती अनहता शब्द वा जंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे काओ सहस मूरत नन्ना एक तोही सहस पद बिमल नानी एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिसदे चानण सब मैं चानण होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो आनंद नु मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारं कौ होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोध नगर मोह भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हाले मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा।

अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डा हे। जन नानक नाम उधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी मोहल्ला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता। संत नहल की बेला इहा काट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। आउद कट है दिन सरहना रे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ। एह संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पिया वह एहो रस अकत कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाज हो।

ਏ ਨਮਹ ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਵਿਸ਼ਮ ਪਰੇ ਕੈ ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਗੰਤ ਅਨਿਕੈ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰ ਸੁਦਾਖਿਰ ਕਿਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖਿਰ ਕਿਨਕਾ ਇਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੈ ਤਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਯਾਵੈ ਕਾਂਕੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਿਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੁਫਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨੇ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛੁ ਸੁੱਜੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਤ ਮਾਹੀ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਤਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮਹਤਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਵ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨੇ ਆਪ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਕਨੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸੈ ਹਰਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਦਿਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬੂ ਨ ਝੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿ ਸਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਚਲ ਆਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਤ ਚੁਨਕਾਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੰਤ ਨ ਪਾਰ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੌਂਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਯੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭਸਾਤ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜੈ ਮਹਾਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੀਰੈ ਚੱਲੈ ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤ ਭਾਰੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਿਨ ਮਾਹਿ ਉਧਾਰੀ ਅਨਿਕ ਪੁਨਾ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ
हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनिक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जी मार्ग जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नामन सदा त्याई नानक गुरमुख परम गत पाईए छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तै पार पराही अनिक बिघन जय आए संघारै हर का नाम तत्काल उदारै अनिक जो निजन मैं मर जाम नाम जपत पावै विश्राम हौ मैला मल कबू न धोवै हर का नाम कूट पाप खोवै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाईए साध कै संग जे मार के गणे जाहे न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जे पैडै मंद गुबारा हर का नाम संग उजियारा जह पंथ तेरा को न सुजानू हर का नाम तै नाल पछानू जय महाप्यान तपत बहु काम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जात्र का मन तुझ आ कर खै तह नानक हर हर अमृत बरखै भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जनकोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औकद साध कमात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन किन्नु दान मंथन रंग रते रंग कै नानक जन कै बिरत विवेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का पर न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर धन जन को आप प्रवदीना हर हर जन कै उठ सतानी हर प्रताप जनवर न जानी उत भोजन हर रस राते सुन समाध नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बह करे नानक जन संकेते तेरे पार जात्यो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लत्था नाम की महिमा संत हृदय संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग विडभागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन को श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान कट शास्त्र सिमृत विख्यान जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुण्य दान होम में बहु रत्ना शरीर कटाए होम में कर राती वर्तनेम करै बहुपाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै महा उदास तपी सरथीवै अग्न माये हुमत पुराण कनिक सुव है वर भूमदान नेवली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजम साधन निमक निमक शरीर कटावै तौ भी होम में मैल न जावै हर के नाम संसर कछ नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीर दे छुट्टै गर्व गुमाना मन ते उठै सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देह को बहु साधना करे मन ते कबू न बिखे अटरै जल तो वै बो देह नीत शुद्ध का हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहुत सियान जम का भव व्यापै नक जतन कर तृष्ण ना त्रापै भीख अनेक अग्नि बुझै कूट पाव दरगै नहीं सिजै छूट सुनायु पयाल मुह व्यापै माया जाल अवर करतू सगली जमदानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जप दुख जाए नानक बोलै सह सुभाए चार पदार्थ जे को मा गए साजना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सुदगावै
जी को अपनी सो बालू रह सा संगे हो मैं छूर है जी को जन्म मरण ते डरै सा जिना की सरनी पर है जिस जन को प्रदर्श प्यासा नानक ता कैबल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सा समझा का मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिय सब ते ऊंचा जा का मन हुए सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पिके सगल सिर साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन्न हिलिपा निर्धन को तन तेरु नाओ निथावे को नाव तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरु मान सगल कटा को देव उदान करन करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जान हो आपे अपन संगा प्रवराते तुमरी उस्त तुम ते हुए नान कवर न जान सकोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम है उद्यम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जा सुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जी कट वसै हर नाम सुलो निर्गुण यार यानिया सुप्रभ सदा सुमाल जिन किया तिस्थित रख नानक निभि नाल वस्तपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सासुआ सिगारिया गर्भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध भर जोबन भोजन सुख सूद बिरध पयाओ पर साख सैन मुख पयाओ बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श ले हो तो नानक सी जय जे प्रसाद धारु पर सुख बसै सुत प्रहात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पी वह शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला जी प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करनी तरसना तिसे त्यागवर संगरचना ऐसे दोग मुड़ंद व्यापे नानक काड लिहो प्रव्यापे आदंत जो रखनहार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निज पावै तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सा सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दर गह मान तिसे बिसारे मुग्ध अजान सदा सदा यो भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्या कौटी संग रचै सा छोट झूठ संग मचै जो छिड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारे धोए गर्द प्रीत भस्म संग होए अंधकु मैं पतत बिकरा नानक काट ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक उचारा करे दिन रात बाहर पे गंतर मल माया छप सुनाए कछ करे छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोक सुवान अंतर अगन बार तन स्वाहा गल पात्र कैसे तरह ताहा जाके अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सह समात सुने अंदा कैसे मार्ग पावै कर गहले हो ओढ़ निभावै कह बुझारत बुझे डोरा निष्कही है तू समझे पूरा कह बिशन पद गावै गुंग जतन कर तो भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय सुहावै न चीत जो बैराई था सो प्रीत बलुआ के गृह भीतर बसे अनद के माया रंग रसै दृढ़ कर्मा न मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रोह आहु जुगत बिहाने कई कर्म याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो स्वाग्याकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छूट कैला गयान सुवाए नानक कहु न सी जई बिन्ना वह पत जाय अष्टपदी
दस वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्तु कारण बिखूट गवावै, एक भी न दे दस भी हिर ले, तो मूड़ा कहु का करे, जिस ठाकुर स्यों ना ही चारा, ताकू की जय सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभु मीठा, सर्व सूखता हु मन उठा, जिस जने अपना हुक्म नाया, सर्व तोग नानक तिन पाया, अगंत साहु अपनी देरास, खात पीत बरतैन दुलास, अपनी मान कच बौर साहु ले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीताप ही खोवै, बौर उसका विश्वास न होवै, जिसकी वस्ते से आज्ञा राखै, प्रभु की आज्ञा मान मथै, उसते चौगुन करै निहाल, नानक साहिब सदा दयाल, अनिक पांत माया के हित, सर पर होत जान अनित, बिर की छाया स्यों रंग लावै, ओ बिनसै ओ मन पछतावै, जो दिसै सो चल नहार, लपट रहो तै अंध अंधार, ओ बटाओ स्यों जो लावै नेहि, ताको हाथ न आवै केहि, मन हर के नाम की फिर सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई, मिथ्या तन तन कुटम सुबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राजोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती यशो वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया फेक हस्ता, मिथ्या ध्रुव मोह विमान, मिथ्या पशु प्रगत गुमान, अस्त्र पग साध की शरण, नानक जप जप जीव हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरे, मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै, मिथ्या तानी पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भय, सफल दे नानक हर हर नाम लय, बिरथि साकत की यार जा, साच बिना कहूत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाई, मेघ बिना ज्यो खेती जाए, गोविंद भजन बिन बृथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम, धन धन ते जन जी घट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ, रहत अवर कछवर कमावत, मन नी प्रीत मुखो गंड लावत, जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर पेक न काऊ पीन, अवर उपदेशय आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे, जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पानी तिन प्रभु जाता, नानक कुंजन चरण पराता, करूं बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपह मानै, आपह आप करत नबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा, उपाव सियान सगल ते रहत, सब कछ जानै आत्म की रहत, जिस पावै तिस लै लड़ लाई, तां तनंत रहा सुमाई, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी श्लोक, काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहंग मेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि, जे प्रसाद छत्ती अमृत काहि तिस ठाकुर को रख मन माहि, जे प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै, जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याय सदा मने अंदर, जे प्रसाद ग्रह संग सुख जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, अठ पैर सिमरो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग, जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्या कतवर लुभावै, जे प्रसाद सुख से सोई जय मनाठ पैर ताका चस गावी जय, जे प्रसाद तुझको नम जे प्रसाद तु सब को मानै मुक्ता को जस रसन बखानै, जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जप दर गै मान पावै, नानक पत सेती घर जावै, जे प्रसाद आरू कंचन देही लिव लावो तिस राम सनेही, जे प्रसाद तिरौला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत, जे प्रसाद तिर सगल छिदर ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताकै, जे प्रसाद तुझको ना पहुँचै मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे, जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करे,
जे प्रसाद भुखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद सो हस्त सवारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रो प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सत सहत्याई तिसहत्याई जो एक कल कै यहाँ उहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु कौ सात सात सितारी जे प्रसाद तिर सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा नूप जे प्रसाद तिर निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कहे जे प्रसाद सुने करना जे प्रसाद भिखे विस्माग जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभु त्यागवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तो प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्तता को जाप जे प्रसाद तिर कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साथ रे मन मेरे तू ता सिवरा जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सुहर गुण गाओ प्रभु कृपा से होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मतूतम होए सर्व निदान प्रभु तेरी माया आपु कछु न किनु लया जित जित लाओ चित लगै हरनाथ नान किन कह कछु न हाथ श्लोक अगम गाद पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साजना की अचर्ज कथाष्टपदी साधक संग मुखुजल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगटै सुज्ञान साधक संग बुझै प्रभु नीरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधक महिमा भरनै कौन प्राणी नानक साधक शोभा परमाहि सुमानी साधक संग अगोचर मिलै साधक संग सदा प्रफुल्लै साधक संग आवै बसपंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुई सब की रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग नकत उतावै साध संग स्थित मन भावै साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साधक संग न बीगा पैर साधक संग ना ही को मंदा साध संग जानी परमानंदा साधक संग नहीं कहो साधक संग नहीं होता साधक संग तुझे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कबू तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस्तक उच्चर रहे साधु कै संग अजर सह साधक संग बसै सब था साधक संग बसै थान उच्चै साधु कै संग महल पहुँचै साधक संग उदड़ै सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उदारै साध संग साजन मीत कुटम निष्ठारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सबको वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधक संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सुरभ थान गामु नानक साधक संग सफल जनामु साधक संग नहीं कछ कालु दर्शन भेटत होत निहालु साधक संग कलुपत हरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग यहाँ उहाँ सुहेला साध संग बिछुरत हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साधक संग सुनु हर नाऊ साध संग हर के गुण गाऊ साधक संग न मन ते विसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लगै प्रभु मीठा साधु कै संग कट कट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी
साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जीता सुने तीता बख्याने। साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा उचते उची, साध की शोभा मूचते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेकै किस बिन कोय। नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक। जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी के दृश्यमान। जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान, ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक। ज्यो वसुधा को खुद को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाऊ। नानक ज्यो पावक का सह सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश। जैसे तारु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान। ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा। मने अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए। नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना। आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चिन्ना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया। ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी कुप्रयास। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा। ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा। ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के हुए सुफला। ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार। नानक ब्रह्म ज्ञानी जप है सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै वसै प्रसंग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्या, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये। ब्रह्म ज्ञानी को खूजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माए। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सुधा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए दाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक उर धार जो अंतर नाम, सर्व में पेख भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कारे, निमक निमक ठाकुर नमस्कार। नानक पर सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परसो। मन में प्रीत निरंजन दर्शो, पर त्रैरूप न पिखे नेत्र। साध की टैल संसंगेत, कर न सुने काहू की निंदा। सब ते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हरे। मन की वासना मन ते टरे, इंद्रिय चित पंच दोख ते रहत। नान कोट मध्य को ऐसा परस, वैष्णो सोजी सुपर सो प्रसन्नो। विष्णु की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हो वह नहीं कर्म। तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे। केवल भगत कीर्तन संग राचे, मन तने अंतर सिमरन गोपाल। सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ वर नाम जपावे। नानक वैष्णु परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग। सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसे सगला परम। कर पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवे। तिस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे।
नित नीत मंतन अर्पय विष्ण प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक सब गौती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म में शुद्ध है राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै बुद्धि जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद प्राण सिमरत बूझै मूल सुख मैं जानै स्थूल छो वर्णा को देव उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान छो वर्णा मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए सासन पावै जन कोए कर कृपांतर उतारै बस प्रेम भूत पात्र को तारै सर्वरूप का उकद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जुगत कितै न पाइए धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम जिसका मन पार ब्रह्म का निवास किसका नाम सत राम दास सतम राम कृष्ण द्री आया दास दसंतन पाहे तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर्गै प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूची पर सगुर संगा तुम दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा तुम हिताव है जीवन मुख सो कहा वह तैसा हर्क तैसा शोक सदानंद तय नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी समाटी तैसा मृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ता ऐसाई जुगत नानको पुर कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रख है तैसा तिनाओ आपे करण करावण योग प्रभाव है सोई फुन होग अस्त्रवाप अंत तरंग लिखी न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मत तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भये निहाल श्लोक उस्तुत करै अनेक जानंत न पारावार नानक रचना प्रभ रचि बहुविधनिक प्रकार अष्टपदि कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट वन भ्रम उदासी कई कोट वेद की श्रुति कई कोट तपिसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट गवका विचार है कई कोट नवतन नाम त्यावै नानक रतिक अंत न पावै कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभेगात्म निकोर कई कोट पर दर्व को ही रह कई कोट पर दुख न कराय कई कोट माया श्रमाये कई कोट पर देश परमाये जित जित लावो तित तित लगना नान करते की जान करता रचना कई कोट सज्जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाये कई कोट पात्र बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी वैसंतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट सस्य सून खेतर कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपना सूतार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत शास्त्र कई कोट कीर्तन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जखि नर पिशाच कई कोट भूत प्रे शुकर मिर्गा सब ते नेरे सब ते दूर नानका बुलिप्त रहा प्रभुर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरसुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव हमर कई कोट बोझो नि फिरे कई गोट बैठत ही खाए कई गोट काल तक पाए कई गोट कीर्तनवंत कई गोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तय तय राखे नानक सब किस प्रभ के हाथे कई गोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागे कई गोट प्रभ को खोजनते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई गोट दर्शन प्रभ्यास तिन को मिलो प्रभ विनाश कई गोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होय आप सुप्रसन्न नानक दे जन सदा धन धन कई कोट खाणी अर खंड कई कोट काश ब्रह्मंड कई कोट होय अवतार कई जूत किन्नो विस्तार कई बार बसरी उपासार सदा सदै के कंकार कई कोट किन्ने मोहात प्रभ ते होय ब्रह्मा सुमात ताका अंत न जाने कोई अपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तम प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सत सद ही जीवै कई कोटा नाम गुण गावै कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सत सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सह समावै अपने जन को साथ साथ सुमारे नानक कोय परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार ने जल तल मही अल सो इष्ट पदी
करन करावन करने जोग जो प्रभाव है सोई हो खिन मैं ताप तापन हारा तने किस पारा वारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे बुझे हुक्म समावै हुक्मे उच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रिहा समाई प्रभावै मानुकत पावै प्रभावै तां पात्र धरावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै तां हर गुण भाखै प्रभावै तां पथ सुधारै आप करै अपन बिचारै दुआ सिरिया के आप स्वामी खिले विकसे अंतर जामी जो पावे सुकार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहु मानुकते क्या हुए आवे ज्योतिष पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब किसी ले ज्योतिष पावे सोई करे अनजान विख्या मैं रचे जी जानता अपना बचे पर मैं भूला दह दिस्तावे निमुख माचार कुम फिर आवे कर कृपा जिस अपनी पग दी नानक तिजन्ना मिले खिन मैं नीच पीठ को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दिस प्रगटावे जाकू अपनी करे बख्शीस ताका लिखा न गने जगदीश जीव पिंड सब तिसकी रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बल नाही साथ करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावै सोई फुनतियो कबहू उच नीच में बसै कबहू सोग हर क्रब हसै कबहू निंद चिंद विहार कबहू बकास पयाल कबहू बीता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबहू निरत करै बहु भात कबहू सोए रह दिन रात कबहू मां क्रोध विकराल कबहू सर्व की हो तरवाल कबू हुए वह बड़ राजा कबू पेखारी नीच का साजा कबू अपकीर्त में आवे कबू भला भला कहावे जो प्रवरा कहते ही रह गुर प्रसाद नानक सच कहे कबू हुए पंडित करे बख्यान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू से साधिक मुख्यान कबू कीट हस्त पतंग हुए जी अनक जुन परमै परमिया नाना रूप जो सुहागी दिखावै जो प्रभावै तिवै नचावै जो तिसपावै सोई होए नानक दूजा वर न कोए कबू साध संगति उपावै उस स्थान ते बहु न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नामृति करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जले आए कटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सदगुरु पान श्लोक सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपसको करवंत कहावे जन्म रह भोजन प्रभावै धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै नानकीहां सुख नानकीहां मुक्ता गै सुख पावै धनवंता होई कर गरबावै तिन समान का संग ना जावै बोलस कर मानुख उपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश सब ती आप जानै बलवंत खिन मैं होए जाए प्रसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो धारी श्रम पावे सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नरक सुरक फिर फिर अवतार अनिक जतन करा तम नहीं द्रवै हर दरगह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै इसे भलाई निकट न आवै सर्व किरेन जाका मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माई तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक छूटे सहस कटे लक उठतावै तृप्त नयावै माया पछ पावै अनिक भोग विख्या के करै न तृप्तावै खप खम्बरै बिना संतोख नहीं कूरा जय सुपन मनोरथ व्यर्थ सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करी तैसा होए
आपे आप प्रभ सोए जो कुछ किन्नु सो अपने अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझै देख करै विवेक आपहि का पहि अनेक मरे न बिनसै आवै न जाए ना सदी रहा समाए आप देसै समझै आप वह फिर चिय सब कै साथ आप गिनु अपन विस्तार सब कर उसका करने हार उसते पिन कहो कि छोरे थान तनंतर कै सोए अपने चलताप करने हार कौत कर रंग अपार मन में मन अपने भाई नानक कीमत कह न जाई सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद गिने वकियानी सच सच सत सब कीना कोट मध्य किने बिरले चीना भला भला भला तर रूप सुंदर अपार रूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बकियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार उस्पदी संत कै दुखनार जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सुबत हीन संत के हथे को रखै न कोय संत कै दुखन तान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संसंग निंदक बीतरै संत के दुखन ते मुख भवै संतन कै दुखन काग ज्यो लवै संतन कै दुखन सर्प ज्योन पाए संत कै दुखन त्रिगद ज्योन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का था को नाही नान संत पावे तो पीगत पाए संत कनिंदक मात ताई संत कनिंदक टिक न पाई संत कनिंदक महतियारा संत कनिंदक परमेश्वर मारा संत कनिंदक राजतेहीन संत कनिंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत के निंदा दुख में दुख नानक संत पावे तो उसका पी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का निमित्त संत के दुखी को डान ला गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी माँ अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरै संत की दुख न सुख ते टरै संत दुखी कहो ना ही टाओ नान संत पावे तन ले मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटै संत का दुखी किते काज न पहुँचै संत के दुखी को ध्यान फरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किचनाए अपन बीजा पे ही खाए संत के दुखी को वरण रखन हार नानक संत भावे ता ले उभार संत का दुखियों बिल लाए जो जल बिहोन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै ज्यो पाव किंद नहीं त्रापै संत का दुखी चुटै केला ज्यो बुआड़ खेत माए दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमिथिया कैत कृत निंद का तुर ही पया नाम युद्ध स्वभावै सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाई संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरे न जीवाई है संत के दुखी की पूजा न आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत के दुख न तृष्टै कोई जैसा भाव है तैसा कोई होए पया कीर्तन मिटै कोई नानक जाने सच्चा सोए सब कर तिसके होकर निहार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तुति करो दिन रात सहते आओ सास विरास सब कुछ वर्तै तिसका किया जैसा करे तैसा को थी अपना के लाभ करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे तैसा अपन नाम दे बड़ बाकी नानक जन से श्लोक तजु से आनप सुरजन हो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पहु जाए अष्टपदी मानु की टेक वृथि सब जान देवन को एक है भगवान जिस कह दिए रह अगाए बौर न तृष्णा ला गया मार रखे कुआप मानु कह किस नाही हाथ तिसका हुक्म सुख होए तिसका नाम रखंट पुरोए सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक विघ्न न लागे कोई सत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग सात संग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटै पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर कह नानक उजल मथा
बड़भागी ते जन जग माही, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, उसे तनवंत गणि संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानू ते सुखी। एको एक एक पछान है, तुत की उसो जी जान है। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हें निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानू तृष्णा बुझै। सास संग हर हर जस कहत, सर्व रूप ते हर जन रहत। अंदिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मैं सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख। जिसको हर परम मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै। जिस पर वे अपना कृपा करै, सो सेवक को किसते डरै। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद सब बुझिया। जब देखो तब सब किच मूल, नानक सो सुकम सोई असूल। न किच जन्मै न किच मरै, आपन चलता आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी धारी। सब सृष्ट आपे आप, सगल में आप। अनेक जुगत रच थाप उथाप, अविनाशी नाही किच खंड। धारण धारो ब्रह्मांड, अलख अभेव पुरख प्रताप। आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सोभा बंतो। सगल संसार उदरै तिन मंतो, प्रभ के सेवक सगल उदारण। प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेले कृपाल। गुरु का सब जप है निहाल, उनकी सेवा सोई लागे। जिसनु कृपा करे बड़भागे, नाम जपत पावे विश्राम। नानक तिन पुर को उत्तम करमान, जो किछ करे सुप्रभ कह रंग। सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाए होवै सो होई। करने हर पछाणे सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना। जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिसते उपजी ते समाय समाय। सुख निदान उनू बने आए, आपस को आप दीनो मान। नानक प्रभ जन को जान, सलोक सर्व कला भरपूर। प्रभिरता जन अनहार, जाके सिमरन उदरिय। नानक इस बलिहार अष्टपति, टूटी गाढ़ अनहार गोपाल। सर्व जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे। तिस्ते बिरता कोई नाहे, हरी मन मेरे सदा हर जाप। बनासी प्रभ आपे आप, अपन किया कछु न होए। जिस प्राणी लोचै कोए, तिस बिना ही तेरे किच काम। गत नानक जपे कर नाम, रूपवंत होए नाही मोह। प्रभ की जो सगल कट सो है, धनवंता होए क्या को गर्भ है। जा सब किस तिसका दी है दरवै। सूरज को कहावै, प्रभ की कला बिना कहता वै। जी को हुए वह दातार, इस दिन हार जाने का वार। जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सूजन सदा अरोग। जो मंदिर को थम मैं थम बन, त्यों गुरु का शब्द मने असमन। जो फाका नाम चढ़ तर प्राणी, गुरु चरण लगत निस्तर। जो अंधकार दीपक प्रगास, गुरु दर्शन देख मन होए विगास। जो माँ ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत पुटावे। तिन संतन की बांचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिन लाइय, पूर्व लिखे का लिखिया पाइय। दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तुत सहज तार। जो कछ करे सोई सुखमान, भूला गाहे फिरे जान। कौन बसताई तेरे संग, लपट रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पद सिद्धि कर जाहे। जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज मान लिहो मन बोल, राम नाम हृदय में तो। लाद के सत्य संचाल, अवर त्याग विकिया जंजाल। तन तन कह सब कोए, खूजल हर दर गै सोए। एहो व्यापार विरला व्यापार है, नानक ताके सुध बलिहार है। चरण साध के तुय तुय पीओ, अर प्रसाद को अपना जीओ। साध की धूर करो स्नान, साध उपर जाइये कुरबान। सा सेवा वडभागी पाइये, सा संग हर कीर्तन गाई। अनेक विघन ते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे। ओट गई संत तरे आया, सर्व सुख नानक थे पाया। मृतक को जीवा लिनहार, भूखे को देवता दार। सर्व निदान जा की दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाही। सब किस तिसका करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ न हो। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब त्योच निर्मल करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जा कह मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए तिम लोए, जा कह हृदय को होए। सच करनी सचता की रह, सच हृदय सत मुख है। साची दिल सच है अगार, सच वर्त सच अपार। पार ब्रह्म सच कर जाता,
नानक सोजन सच समाता। सलोक रूप नरेख न रंग किछ त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाई नानका जिस होवै सो प्रसन्न वस्तपदी। अविनाशी प्रभवन मैं राख मानुकी तू प्री त्याग तिस्ते पर नाही किछ कोय सर्व निरंतर एको सोय। आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन एहो नराओ मनसा पूरन सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फूर तिसका मंत्र न जानै होर अनद रूप मंगल सदजा कह सर्व थोक सुनिया करता कह राज में राज योग में जोगी तप में तपीश्वर कृष्ण में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस गुरु का किन अंत न पाया जा की लीला की मित नाही सगल दीवारे उगाए पिता के जन्म के जाने पूर सगल गुरु अपना सूत सुमत ज्ञान ध्यान जन दे सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे

कही न जाए, नानक रहिया सर्व समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयालु, भगत वछल सदा कृपालु। अनाथ नाथ गोविंद गोपालु, सर्व कटा करत प्रतपालु। आदि पुरख कारण करता, भगत जना के प्राण आधारु। जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाई लावै मन हीत। हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए। अनक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई। बो भोजन का प्रसंगी, रसना जपती हर हर नीत। पली सो करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक परगास। सलोक सार

आप अष्टपदी जब अकार इहु कच न दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संत मात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सो कहु किसै व्यापत जब अपन आपा पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम अपन खेला वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किसको गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरह तब कवन निडार कवन कत डरै अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गाधे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपन आप आपिय चर जा नानक अपन रूप आपिय पर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल छिदर लगत कौ कीश जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसै भूख कवन त्रिपदावे करन करावन करने हार नानक करते का नाही समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कलाया पै परवीन तै वेद कतेव कहा को चीन जब अपने आपा पुर धारै तो सगन अपसगन कहा विचारै जय अपन ऊच अपना बनेरा तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जह अचल चेद भेद समाया ऊहा किसै व्यापत माया आपस को आप है आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जय कहे एक भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपन आपा पतियारा तय कौन कथे कौन सुन नहारा बहु बेअंत उच ते उचा नानक आपस को आप है पहुंचा जे आप रचियो परपंच कार त्यो गुण में किन्नो विस्तार पाप पुन तै पही कहावत को नरक को सुर्ग बंचावत आल जाल माया जंजार मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान अपन खेला कर दिखै खेल संकोचै तो नानक कै जय अभिगत भगत है आप जय पसरै पासार संत प्रताप दुहु पाकाया पेतनी उनकी शोभा उन्हों बनी आप है कौत करै अनंत चूज आप है रस भोगन निर्जोग जिस भावै तिस आप न लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै।

दृष्टारु अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आप है एक आप विस्तार जाति सुभाव है तन सृष्ट उपाय आपने पाने लई सुमाए तुम ते भिन्न नहीं किच हुए अपन सूत सब जगत परोए जाकू प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए।

नै आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपालै जी अनुभव पात जो जो रचियो सो तिसै त्यात जिस भावै तिस लय मिलाई भगत करहै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करनहार नानक इक जानिया।

तुझ परम पद पाई, इसते ऊपर नहीं विचार। जाके मन बसिया निरंकार, बंधन तोर पै निर्वैर। अन दिन पूछ गुर के पैर, ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपै मेले।

जिस मन बसै ति साच परिकिया। मन तन नाम जपहु लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निबह खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक बौर नया वह जाए। तिस्ते दूर कहा को जाए, उबरे राखन हार ते आए। निर्भउ जपै सगल भउ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पहुँचन हार। सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्य पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन

न जाई अचरज बिस्मार तिन देखिया जिसे आप दिखाई नानक तिस जन सो जी पाई सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्यापर।

पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माही चार कुंत दै दिशे समाही तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ।

आप अडोल न कब ढूंढो ले सर्व कला कर खेल खेल बोल ना पाइये गुण अमूल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में इहो विश्वास संत

सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिसकी ए रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत, तिस भावै ता करे विस्तार, तिस भावै ता एकंकार, अनिक कला लकी नह जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप आपर पूर, अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नैना पेख नहारा,

सब कह मद अलिप तू रह, जो किछ कहना सुआपे कह, आग्या आवे आग्या जाए, नानक जा पावै तां लै समाए, इस्ते होए सुनाही बुरा, पूरै कहो किने कछ करा, आप भला करतू तत निकी, आपे जाने अपनी जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत अपन संग्राच, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर हुए ता सोची पाए, तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक हो जान, जो जाने तिस सदा सुख हुए, आप मिलाए लय प्रभ सोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ, आ

के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आस नित त्याग उतरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहु साध संग अगन सागर तरहु हर तन के पर लेहो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमली कलाल हे रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्दनाथ वाजै सुन सुन अंध करे प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभाप मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निबही खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सुहोत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहुर न हो वै आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रित नवनित बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मत सगल ते उदास।

नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग में ता की गत होए, गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध सा संग मिटै, संत कृपा ते जमते छुट्टै, जाके मस्तक

हर प्रभु चीत। जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ देह तत्काल उदार। दिन भर शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माही।

सुखमनि सुखमनि सुखमृत प्रवना भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख होहे तां इक ना चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बखशीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कह ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आखा है मंगा है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लै।

नाल चलै सब कोए, चंगा नाउ रखाए कह जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोय ना सुजई जे तिस गुण कोय करे। सुना है सिद्ध पीर सुरनाथ, सुना है धरत धवल आकाश, सुना है दीप लो पाताल, सुना है पोहे न सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, सुना है ईसर ब्रह्मा इंद, सुना है मुख साला हनुमंद, सुना है जोग जुगत तन भेद, सुना है सासत सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, सुना है सात संतोख ज्ञान, सुना है आठ सठ का स्नान, सुना है पढ़ पढ़ पावै मान, सुना है लागै सहज त्यान, नानक भगता सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, सुना है सारा गुणा के गाह, सुना है सेख पीर पातशाह, सुना है अंधे पावै राह, सुना है हाथ होवै असगाह, नानक भगता सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कह पिछै पछुताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करण विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवै मन बुद्ध, मन्ने सकल भवन की सुध, मन्ने मोहे चोटा न खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन मार गुठाक न पाए, मन पथ स्यों परगट जाए, मन मग न चलै पंथ, मन धर्म से थी संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन पावै है मोख द्वार, मन परवारै साधार, मन तरै तारे गुर सिख, मन नानक पवै है न भेखो, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पाव है दरगह मान, पंचा सो है दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कह करै विचार, करते कह करण नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, तबलै उपर केता पार, धरती होर परै होर होर, तिस ते पार तलै पवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया वुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता फसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन राहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाख सार, असंख मोन लेवलाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम।

आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देण ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मन सोर जोर ना श्रुति ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कार वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्म साल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कछ पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखा हो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़िया रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरति सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद बिनोद कूड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकिया गला कथिया न जाहे जे को कहै पिछै पशुताए तिथै घड़िया सूरत मात मान बुद्ध तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरह न ठाके जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै केलो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नजर निहाल तिथै खंड मंडल वर पंड जे को कथा है ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जीव जीव हुकम तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार आहरण मत वेद हथियार पाओ खला अग्न तपताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो आपनी

नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं, छपाए छंद त्वा प्रसाद। चक्र चिहन अर बरन, जात अर पात नहन जेह। रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह। अचल मूरत अनुभव प्रकाश, अमितोज कहि जय। कोट इंद्र इंद्राण साहु साहान गणि जय। त्रिपवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन तृण कहत।

आदि नमस्तंग अशेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सो एकाय नमस्तंग अनेकाय नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरधाते नमस्तंग निरघाते नमस्तंग निरतूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अतापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग तिर्वर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रपोगे नमस्तंग सजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरमे नमस्तंग जलाशरे नमस्तंग निराशरे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे आदेशं आदेशे नमस्तंग अपेसे नमस्तंग निर्धामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वकापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवै नमस्तं अपेवै नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौने नमो सर्वपहुने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमो सत अबंदे नमस्तं नृसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्त रागे नमस्तं सोहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अतहे है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निधान है तिरवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंद है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंब है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है कुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पहुणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पहने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पहन पहने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ती बेभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगवेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इस्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तं निवासी सदा सिद्धदा बोधदा विरुद्धकर्ता अदो ऊर्ध अर्धं अगं ओघहर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तास्ततमं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं फले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग प्रमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो
शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते।

नमो प्रीत प्रीते, नमो रोग रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व यंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृशं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे, कृपालं सरूपे कुकर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी। चरपट छंद तुआ प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता, सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं भुगता सर्वं जुगता, सर्वं देवं सर्वं देवं, सर्वं काले सर्वं पाले। रुआल छंद तुआ प्रसाद, आदि रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव आप हेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल, यत्र तत्र विराजहि अवतूत रूप रिसाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नारेख, आद पुरख उदार मूरत अजोन आद अशेख, देश और न पेश जाकर रूप रेख न राख, यत्र तत्र दिशा विशा होय फैलो अनुराग, नाम काम बहीन पेखत ताम हुन है जाहे, सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानत काहे, एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक, देव पेव न जानही जिह वेद और कतेब, रूप रंग न जात पात सो जानई केह जेब, तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन, चक्र बकर फिरै चतुर चक मानई पुरतीन, लोक चौदह के बिखह जग जापही जिह जाप, आद देव अनाद मूरत थापे ओ सबै जिह थाप, परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार, सर्व सरच्यो स्वयं भव गडन पंजन हार, कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश, धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख आपेश, अंग राग न रंग जाक है जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम, आप रूप अमीक उस्तत एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत, अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार, सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख, सर्व शास्त्र न जानहि जिह रूप रंग अर रेख, परम वेद पुराण जाका है नित पाख तो नित, कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित, मधुबार छंद त्वा प्रसाद, गुणगण उदार महिमा अपार, आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश, नेस दिन अनास आजान बाहु साहान साह, राजान राज पहनान पान देवान देव उपमा महान, इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल, अनपूत अंगो आपा अपंगो गतमित अपार, गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम, आतदुत प्रचंड मितगत आखंड, अलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडंड बाढ़ चाचरी छंद द्वा प्रसाद, गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियं करियं निरनामे आकामे पूजांग प्रयात छंद, चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता, चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने, चत्र चक्र वारती चत्र चक्र पारती, चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले, चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे, चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने, चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमं न पित्र, न कर्मं न काय अजन्मं अजाय, न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र, प्रतिशय अधिशय अदृश्य अकृशय, भगवती छंद त्वा प्रसाद, काथते
ਕਿ ਆਸ਼ੇ ਜਦੇ ਸਹਿ ਕਿਆ ਭਿਜ ਭੇਸੈ ਕਿਆ ਗੰਜ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਭੰਜ ਭਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕੇ ਆਦਿਤ ਸੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਧੂਤ ਵਰਣੈ ਕੇ ਬੇਭੂਤ ਕਰਨੈ ਕਿ ਰਾਜੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੰ ਤੁਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸੂਪ ਵਰਣੈ ਕਿ ਸਰਬਾ ਆਭਰਣੈ ਕਿ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰ ਸ਼ਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਸਰੂਪੇ ਕਿ ਅਨਭਉ ਅਨੁਪੈ ਕਿ ਆਦ ਅਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਭੇਵ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਰੰ ਬਹੀਨੈ ਕਿ ਏਕੈ ਅਧੀਨੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਰਜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਬੇਐਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈ ਬੋਲ ਗੈਬ ਹੈ ਕਿ ਅਪੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਨ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦੇਹਾਂਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਲੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਹੋ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਾਹੋ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਗੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਕਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਤ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨੇ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਮੈਂ ਕਿ ਪਰਮੰ ਫਾਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕਿ ਹੁਸਨ ਅਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮ ਉਲ ਰਜ਼ੂ ਹੈ ਹਮੇ ਸੁਲ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈ ਗਨੀਮੁਲ ਸਿਕਸਤੈ ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸੁਤੈ ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲ ਜ਼ਮਾਨੈ ਤਮੀ ਜੋ ਤਮਾਮੈ ਰਜ਼ੂਵਲ ਨਿਧਾਨੈ ਹਰੀਫਲ ਅਜੀਮੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨੈ ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੀਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀ ਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਕੇ ਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤੋ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓਂ ਆਦ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭਰਗੰ ਪ੍ਰਭਾਦੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਦੇ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ ਸੁਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੀ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਸ਼ੇਜ ਹੈ ਅਸ਼ੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨਉਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਭੈ ਹੈ ਅਪੂਤ ਹੈ ਅਤੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅਤੰਧ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਅਭਗਤ ਹੈ ਵਿਰਕਤ ਹੈ ਅਨਾਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਦੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਟਾ ਹੈ ਆਗਾਹ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਭ ਹੈ ਅਨਿਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਨਿਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਅਜਾਤ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਅਭੰਗੰ ਬੇਭੂਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤੰ ਪ੍ਰਮਾਤੇ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਧ ਬੇਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਨਾ ਪੋਤਰੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਸਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਮਾਤੈ ਨਾ ਜਾਤੈ ਨਾ ਪਾਤੈ ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹਮੇ ਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨ ਅਲ ਚਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕ੍ਰੀਮਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨ ਅਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾ ਹੈ
नरकं प्रणास है, बहस तुल निवास है, कि सरबुल गवन है, हमें सुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परम ईश है, समस्तुल अधीश है, अधेसुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीनल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, कि जुरत जमाल है, के अचलन प्रकाश है, कि अमितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है, कि अमितो विभूत है, कि अमितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलन अनंग है, कि अमितो अपंग है, मधुभार शांतो अप्रसाद, मुनमन प्रणाम, गुणगन मुदाम, अर बर अगंज, हर नर प्रपंज, अनगन प्रणाम, मुनमन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, अनुभव अनास, मुनमन प्रकाश, गुणगन प्रणाम, जल थल मुदाम, अनशेज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गतमित उदार, जल थल अमंड, देश वेश अपंड, जल थल महंत, देश वेश बेअंत, अनुभव अनास, त्रित तर तुरास, आजान बाहौ, एक सदाहौ, ओ अंकार आद कथनी अनाद, खलखंड ख्याल, गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम, चेत चरण नाम, अनशे जुगात, आजिज न बात, अनज जुगात, अनरंज बात, अन टोट पंडार, अन ठट अपार, आडीठ कर्म, अत टीठ कर्म, अन ब्रण अनंत, दाता महंत, हर बोल मना शांत तो प्रसाद, करुणालय है, अर्कालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कलकारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जाग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वंपर है, सर्वंकार है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणाकर है, विश्वम्भर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणाकर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजबाकृत है, अमृतामृत है, नर नायक है, खालकायक है, विश्वम्भर है, करुणालय है, निरपनायक है, सर्वपायक है, भव भंजन है, आरिगंजन है, रिपतापन है, जाप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ताकार है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग तम संग सांत रूपे, नमो परम ततंग असतंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग बेभूते, अलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अश्री छंद, अजय अलय, अपह अभय, अभू अजू, अनास आकाश, अगंज अपंज, अलख अपख, अकाल दयाल, अलेख अपहेख, अनाम अकाम, अगा अटा, अनाथे प्रमाथे, अजूनी अमोनी, न रागे न रंगे, न रूपे न रेखे, अकर्मं अपर्मं अगंजे अलेखे, भुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल प्रणामे, समस्तुल प्रणासे, अगंजुल अनामे, समस्तुल निवासे, नृकामं विभूते, समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं प्रणासे, सुतर्मं विभूते, सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी, क्रीमल कुनिंदा, समस्तुल निवासी, अजायब बेभूते, गजायब गनीमे, हरियं करियं करिमुल रहीमे, चत्र चक्रवर्ती, चत्र चक्र भुगते, स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी, दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे, अपंगं बेभूते, चत्र चक्रवर्ती, चत्र चक्र भुगते, स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी, दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे, अपंगं विभूते, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये,
श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरयो कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हुते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप पहली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पहे तो कहा पहे भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिशान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गनय नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बेन अंत कौ अंत के तहम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संयम नेम अनेक वसिख है वेद पुराण कतेब पुराण जमीन जमान समान के पेख है पौन आहार जति जात तार सबै सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाहा दुरंत दुबाह सो साज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चारा सार की धार पशैया तुरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फन दिन साचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जित जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जायत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक जपेंगे मानव इंद्र गजिंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इस नानक जातिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बख ध्यान लगायो नहात फिर यो लिये सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पशा कौ सीस निवायो को बुतान कौ पूजत है पश को मेर तान कौ पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो को बुतान कौ पूजत है पश को मेर तान कौ पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दे मुहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन कौ आज संगरियै पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे उबरियै मरण काल का त्रास निवरियै
पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जिजू करे हौ रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दास कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सेव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देवदायत जशन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो, घट घट की अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाना है, घाट घाट के पट पट की जाना, जब उद करक करा करतारा, प्रजा तारत तब देह अपारा, जब अकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा शिव, महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, ओत पूज खान बहुर राच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो संकर कैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता, जी अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवा मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आए हैं, रक्षा होए ताहे सब कला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हो, ताके ताप तनक मोहरे हो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास दे ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी, सर्व ठाउर मोहो सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई, कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन कोशा करता, श्री अस तुज जब पहे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तसै व्यापत कोई, अड़िल सुने गूंग जो याहे सुरस न पावई, सुने मूड़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर की रहा, हो जो या की एक बार चौपाई को कह, चौपाई संबत सतरै सहस पणि जय, आर्द सहस फुन तीन कह जय, भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीरस द्रव ग्रंथ सुधारा, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक काहे मत एक ना मानेओ, सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद, कहें हम एक न जानेओ,
श्री असपान कृपा तुम्हारी कर, मैं ना कहेओ सब तोहे बखाने ओ, दोहरा सगल द्वार कौ छाड कै, गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार कौ छाड कै, गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया, सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईयां, शब्द ता गावहो हरि केरा, मन जिने वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया ए मन मेरेया। तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो, तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सुवारना। सबना गलां समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरा, घर तां तेरा सब किश है। जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटाओ, जिस दियां ए वडियाइया। कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर तारिया। पंच दूत तुद वासो कीते, काल कंटुक मारिया। धुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे। कह नानक कै सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह बिन देह ने माणी, साची लिवै बिन देह ने माणी, देह ने माणी लिवै बाजहु क्या करे बेचारिया। तुद बाज समरथ कोई नाही, कृपा कर बनवारिया। इस नाओ होर थाओ नाही, शब्द लाग सुवारिया। कह नानक लिवै बाजहु क्या करे बेचारिया। आनंद आनंद सब को काह, आनंद गुरु ते जानिया जानिया। आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल वेखो कटे, ज्ञान अंजन सारिया। अंदरहु जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चै सवारिया। कह नानक एहो आनंद है, आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू दे सोई जन पावै, पावै ता सो जन दे जिसनु, होर क्या करै वेचारिया। एक भरम भूले फिरै दह देसु, एक नाम लाग सुवारिया। गुरप्रसादी मन पया निर्मल, जिना भाणा पावै। कह नानक जिस देह प्यारे, सोई जन पावै। आवो संत प्यारे हो, अकथ की करै कहानी, करहै कहानी अकथ केरी, कित दुआरै पाईऐ। तन मन धन सब सौंप, गुर कौ हुक्म मन्नै पाईऐ। हुक्म मने हो गुरु केरा, गावहो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संतो, कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने, तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत परम पुलाया, माया त मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विट हो, जिन मोह मीठा लाया। कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। ए कुटंब तू जे देखदा, चलै नाही तेरै नाले, साथ तेरै चलै नाही, तिस नाल क्यों चित लाईऐ। ऐसा कम मूले ना कीचै, जित अंत पछोताईऐ। सतगुरु का उपदेश सुन तो होवै तेरै नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किने तेरा, अपना आप तू जान है। जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाण आए।
ਆਖੈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖੈ ਹੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗ ਤੂੰ ਉਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੇ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਇਕ ਵੇਖ ਪਰਸੁਣ ਆਇਆ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੂਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਹਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਖੰਨਿਆ ਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਚਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਹੇ ਤਿਵ ਚੱਲੈ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵੈ ਚੱਲੈ ਜਿਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਹੇ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਹੇ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵਹੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹੇ ਇਹੋ ਸੁਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰਹੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਵਿਣ ਸਹਿਜੈ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸਹਿਸੇ ਜਿਉ ਮਲੀਣ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਹ ਵਜਾਏ ਜੀ ਉਹ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੀਵੇ ਹਾਰਿਆ ਇਹ ਤਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲਗਾ ਮਰਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵੇਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣ ਹੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੀਵੇ ਹਾਰਿਆ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣ ਜਾਰੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੀਉ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹੈ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਹੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਬਬੇ ਕੀਆਂ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੁਨੇ ਭਰਮ ਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸੁਮਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪੇ ਹੋ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਾ ਹੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰ ਹੈ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਾ ਹੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹ ਹੋਆ ਸਮਾਓ ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਪਹਾਓ
आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए, कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। सेव सकत आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन हुवै मुकत शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एकस स्यों लिव लाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तताय सार न जाने, तताय सार न जाने गुरु बाजो तताय सार न जाने। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुतिया रहण विहाणी, गुर किरपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया बोलै अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए जिसनु अन दिन हर लिव लागै जागत रहण विहाणी। माता के उधर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनहु विसारी है, मनहु क्यों विसारी है ए वरदाता जे अगन मैं आहार पहुंचावे। ओसनो केहो पोहे ना सकी जिस नाउ अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा समाधि है। कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनहु विसारी है। जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करतै खेल रचाया। जात इस पाणा ता जम्या परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी त्रिसना माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुल कहे मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसे बिटहो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जी मिलै तिसनों सिर सौंपी है विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन बन जारा, हर रास मेरी मन बन जारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपे हो जियो लाहा खटे हो दिहाड़ी, इहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन होवा बन जारा। ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए। हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बौड़ न तृष्णा लागे आए। एहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जिस आए। कहे नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरे आ हर तुम मैं जोत रखी तातु जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच तातु जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी तातु जग मह आया। मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापय, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापय। अनहत बाणी गुर शब्द जाने हर नाम हर रस भोगो, कहे नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक एहो शरीर परवान होआ जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं ज्योत तहरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हर निहालिया। इहो वेस संसार तुम देख दे इहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जावेखा हर एको है हर बिन अवर ना कोई,
कहे नानक ए नेत्र आन दसे सतगुर मिले हैं देव दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो साचै सुनणै नो पठाए, साचै सुनणै नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया होआ, रसना रस समाणी सच अलख वेडाणी, पाकी गत कही न जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, साचै सुनणै नो पठाए। हार जियो गुफांतर रख कहे, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन, नाऊ द्वारे परगट किए, दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारा लाए पावनी, इक ना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाऊ नवनिद, तिसदा अंत न जाई पाया, कहे नानक हर प्यार है, जियो गुफा अंदर रख कहे, वाजा पवन वजाया। ये हो सच।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿਰ

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी।

अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे हैं गुरु का, जानम मरण दुख जाए।

पै कृत नचे सब कोई नच नच हसे चले से रोई उड़ न जाए सजना हो नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन मन पाओ फौड़ी न उतर।

छलि चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लह आया बिंद्रावन में रंग किया। कल मैं मेद तरवण हुआ नाम खुदाई लहु भया नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुर।

तेड़ धोती कखाई हथ जगत कसाई नील बस्तर पैर होए प्रवान मलेश धान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे ना जाना देखे चौका कड़ी कार उपरिया बैठे कूड़ियार मत पिटे वे

से रंग रोवे चुप पी कर जाए प्रभा नाई किसे केरी बाज सच नाई त्रिवाट ऊपर खर्च मंगा

निहार सत्रियाकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

मानै हुक्म रजाई हे। सत जुग साच कहे सब कोई, सच वरतै साचा सोई। मन मुख साच भरम भउ भंजन, गुरमुख साच सखाई हे। त्रितै धर्म कला इक चूकी, तीन चरण इक दुबिदा सूकी। गुरमुख होवै सो साच वखाणै, मनमुख पचै अवाई हे। मनमुख कदे न दरगह सीजै, बिन शब्दै क्यों अंतर रीजै। बाधे आवहै बाधे जावहै, सोझी बूझ न काई हे। दया द्वापर अधी होई, गुरमुख विरला चीनै कोई। तुए पग धर्म धरे धरनी धर, गुरमुख साच तिथाई हे। राजे धर्म करह

कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, पर पंच कर परमाई हे। माया ममता छोटी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनिस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई हे। एक जप तप कर कर तीर्थ नावह, ज्यों तुद पावै तिवै चलावै, हठ निग्रह अब तीज न भीजै, बिन हार गुर किन पत पाई हे। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने न पाखी, मनमुख कूड़ वरतै वरतारा, बिन सतगुर भरम।

अंदर दूर नाही देखो हर नंदर बिगड़ नाही गुरमुख तर तारी यों पवजल पार लंघाई है देही अंदर नाम निवासी आपे करता है अविनाशी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखे सब दर जाई है ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सुचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है गुर के सेवक सतगुर प्यारे ओए बैसह तख्त शब्द विचारे तत लह अंतर्गत जान है सतसंगत साच वडाई है आप तरह जन पितरा तारे संगत मुकत सो पार उतारे नानक तिसका लाला गुला जिन गुरमुख हर लिव लाई है मारू महला पहला केते जुगवर तै गुबारे ताड़ी लाई अपर अपारे तुंदू कार निरालम बैठा ना तद तंद पसारा है जुग छत्ती तिने वरताए ज्यों तिस भाणा तिवै चलाए तिसह सरीक न दिसै कोई आपे अपर अपारा है गुप्ते बूझो जुग चतुआरे गुप्ते बूझो जुग चतुआरे घट घट वरतै उदर मझारे जुग जुग एका एकी वरतै कोई बूझ है गुरु विचारा हे बिंद रखत मिल पिंड सरिया पौन पानी अग्नि मिल जिया आपे चोज करे रंग महली और माया मोह पसारा हे गर्भ कुंडल मैं उर्द त्यानी आपे जाने अंतर जामी सास सास सच नाम सुमाले अंतर उदर मजारा हे चार पदार्थ लै जग आया शिव शक्ति घर वासा पाया एक विसारे तां पिड़हारे अंदुले नाम विसारा हे बालक मरै बालक की लीला कह कह रोवै बाल रंगीला जिसका सासो तिन ही लिया भूला रोवन हारा हे पर जो बन मर जाहि के की जय।

काली हूं पुन धोले धौले आए, विण नावै गथ गया गवाए, दुर्मत अंदुला बिनस बिनासै, मूठे रोए पुकार आहे, आप विचार न रूवै कोई, सतगुर मिले तो सोजी होई, बिन गुर बजर कपाट न खूलै, शब्द मिले निशतार आहे, बिरद भया तन छीजै देही, राम न जपी अंत स्नेही, नाम विसार चलै मुह कालै, दरगै झूठ खुआर आहे, नाम विसार चलै कूड़ियारू, आवत जात पड़ै सिर चारू, साहुरड़ै घर वास न पाए, पेयड़ै सिर माराहे, खाजै पैजै रली करीजै, बिन अब भगती बाद मरीजै, सर अपसर की सार न जानै, जम मारे क्या चाराहे, पर विरति नर विरत पछाणै, गुर कै संग शब्द घर आण जानै, पर विरति निर्विरत पछाणै, गुर कै संग शब्द घर जानै, किस ही मंदा आख न चलै, सच खरा सुचियारा हे, साच बिना दर्श जै न कोई, साच शब्द पै जै पत होई, आपे बख्श लै तिस भावै, हौ मैं गर्भ निवारा हे, गुर कृपा ते हुक्म पछाणै, जुगह जुगंतर की बिद जानै, नानक नाम जपो तर तारी, सच तारे तारण हारा हे, मारू महला पहला, हार सामीत नाही मैं कोई, जिन तन मन दिया सुरत समोई, सर्व जिया प्रतपाल संभाले, सो अंतर दाना बिना हे, गुर सरवर हम हंस प्यारे, सागर मह रतन लाल बहु सारे, मोती मानक हीरा हर जस, गावत मन तन पीना हे, हर अगम अगाहो अगाध निराला, हर अंत न पाइय गुर गोपाला, सतगुर मत तारे तारण हारा, मेल ले रंगलीना हे, सतगुर बाजु मुक्त कनेही, ओ आद जुगादी राम स्नेही, दरगह मुक्त करे कर कृपा, बख्से अवगुण की नाहे, सतगुर दाता मुक्त कराए, सब रोग गवाए अमृत रस पाए, जम जा गात नाही कर लागै, जिस अगन बुझी ठर सी नाहे, काया हंस प्रीत बहुतारी, ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी, अहनिस भोगै चोज बिनोदी, उठ चलतै मता न की नाहे, श्रेष्ठ उपाय रहे प्रभ छाजै, पौन पानी बै संतर गाजै, मनुआ डोलै दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की नाहे, नाम विसार दुख दुख सही है, हुक्म भया चलना क्यों रही है, नरक कूप मह गोते खावै, ज्यों जलते बाहर मीना हे, चौरासी नरक साकत पोगाइय, जैसा कीचै तैसो पाइय, सतगुर बाजो मुक्त न होई, किरत बादा ग्रस दी नाहे, खंडे धार गली अत पीड़ी, लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी, मात पिता कलत्र सुत बेली, नाही बिन हार रस मुक्त न की नाहे, मात पिता कलत्र सुत बेली, नाही बिन हार रस मुक्त न की नाहे, मीत सखे के ते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परायन, अनदिन कीर्तन की नाहे, कूड़ छोड़ साचे कौतावो, जो इच्छो सोई फल पावो, साच वखर के वा पारी विरले, लैलाहा सौदा की नाहे, हर हर नाम वखर लै चलो, दर्शन पावो सहज महल्लो, गुरमुख खोज लह जन पूरे, यों समदर्शी ची नाहे, प्रभ बेअंत गुरमत को पाव है, गुर कै शब्द मन कौ समझाव है, सतगुर की बाणी सत सत कर मन हो, यों आत्म रामै लीना हे, नारद सारद सेवक तेरे,
त्रिभवन सेवक वड्डो वडेरे सब तेरी कुदरत तू सिर सिर दाता सब तेरु कारण की ना है एक दर से वह दर्द मंजाए कोई दरगह पैदे सतगुरु छुड़ाए हम मैं बंधन सतगुर तोड़े चित चंचल चलन ना दीना है सतगुर मिलो चीनो बिदसाई जित प्रभ पाव हो गणत न काई हो मैं मार करो गुरु सेवा जन नानक हर रंग पीना है मारू महला पहला असुर संघारन राम हमारा घट घट रमैया राम प्यारा नाले अलख ना लखिए मूले गुरमुख लिख विचारा है गुरमुख साधु शरण तुम्हारी कर कृपा प्रभ पार उतारी अगन पानी सागर अत गहरा गुर सतगुर पार उतारा है मन मुख अंदले सोझी नाही आवह जाहे मरह मर जाही पूर्व लिखिया लेख न मिटई जम दर अंध खुआरा है एक आवह जावह घर वास न पावह किरत के बाधे पाप कमावह अंधले सोजी बूझ न काई लोभ बुरा अहंकार आहे फिर बिन क्या तिस धन सिगारा पर फिर राती खसम विसारा ज्यों बेसुआ पूत बाप को कहिए त्यों फोकट कार विकार आहे प्रेत पिंजर में दुख कनेरे नरक पचह अज्ञान अंधेरे धर्म राय की बाकी लीजै जिन हर का नाम विसारा है सूरज तपै अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा बुरियारा है मस्तक भार कलर सिर पारा क्यों कर पवचल लंग सपारा सतगुर बोहित आद जुगादी राम नाम निस्तारा है पुत्र कलत्र जग हेत प्यारा माया मोह पसरिया पासारा जम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत् बिचारा है कूड़ मुठी चालै बहुराही मनमुख दाजै पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वडदाना नाम जपो सुख सारा है सतगुर तुठा सच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए कंडा पाए न गडई मूले जिस सतगुर राखन हारा है खेहू खेर लै तन छीजै मन मुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहु तेरे नरक सुर्ग अवतारा है माया बिख भुयंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो प्रीत न उपजै भगत रते पतियारा है साकत माया कौ बहुतावै नाम विसार कहा सुख पावै त्रिगुण अंतर खपै खपावै नाही पार उतारा है कूकर सूकर कहिए कूड़ियारा भौंक मरह भौं भौं भौं हारा मन तन झूठे कूड़ कमाव है दुर्मत दरगह हारा है सतगुर मिले तमन वहां टेकै राम नाम दे शरण परेकै हर धन नाम मूलक देवै हर जस दरगह प्यारा है राम नाम साधु शरणाई सतगुर बचनी गत मित पाई नानक हर जप हर मन मेरे हर मेले मेलन हारा है मारू महला पहला घर रहो रे मन मुग्ध याने राम जपहो अंतरगत त्याने लालच छोड़ रचो अपरंपर यों पाव मुक्त द्वारा है जिस बिसरया जम जोहन लागै सब सुख जाहे दुखा फुनियागै राम नाम जप गुरमुख जीअड़े इह परम तत् विचारा है हर हर नाम जपहु रस मीठा गुरमुख हर रस अंतर डीठा अहनिस राम रहो रंग राते इहो जप तप संजम सारा है राम नाम गुर बचनी बोलो
संत सभा मह इहो रस टोलो गुरमत खोज लहो करे अपना बहुड़ न गर्भ मजारा हे सच तीर्थ नावहो हर गुण गावहो तत विचारहो हर लिव लावहो अंत काल जम जोहे न साकै हर बोलहो राम प्यारा हे सतगुर पुरख दाता वडदाना जिस अंतर साच सो शब्द समाना जिसको सतगुर मेल मिलाए तिस चूका जम पै पारा हे पंच तत् मिल काया कीनी किस मैं राम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाई है शब्द विचारा हे सत संतोख रहो जन पाई खिमा गहो सतगुर शरणाई आत्म चीन प्रात्म चीन हो गुरसंगत इहो निस्तारा हे साकत कूड़ कपट मैं टेका अहनिस निंदा करह अनेका बिन सिमरन आवै फुन जाव है ग्रभ जोनी नरक मजारा हे साकत जम की कान न चूकै जम का डंड न कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरो पार अफारा हे बिन गुर साकत कहो कौ तरिया हम मैं करता भवजल परिया बिन गुर पार न पावै कोई हर जपियै पार उतारा हे गुर की दात न मेटै कोई जिस बक्से तिस तारे सोई जन्म मरण दुख नेड़ न आवै मन सो प्रभ अपर अपारा हे गुर ते भूले आवहु जावहु जन्म मरहु फुन पाप कमावहु साकत मूड अचेत न चित है दुख लागै ता राम पुकारा हे सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दातै दिए किस कौ दोष देहे तू प्राणी सो अपना किया करारा हे हौ मैं ममता कर दायाया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाले बिखला दे चार बिकारा हे हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन है समाई उठ चलता ठाक रखो कर अपने दुख काटे काटन हारा हे हर गुर पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लिव गुरमुख जाती नानक राम नाम मत उत्तम हर बक्से पार उतारा हे मारू महला पहला शरण परे गुरुदेव तुम्हारी तू समरथ दयाल मुरारी तेरे चोज न जाने कोई तू पूरा पुरख विधाता हे तू आद जुगाद करे प्रतपाला घट घट रूप अनूप दयाला ज्यों तुद भावै तिवै चलावै सब तेरो किया कमाता हे अंतर जोत भली जग जीवन सब घट भोगै हर रस पीवन आपे लेवै आपे देवै तेहो लोई जगत पित दाता हे जगत उपाय खेल रचाया पवन पानी अगन अग्नि जीव पाया देही नगरी नौ दरवाजे सो दसवां गुप्त रहाता हे चार नदी अग्नि असराला कोई गुरमुख बूझै शब्द निराला साक्त दुर्मत डूबह दाज है गुर राखे हर लिव लराता हे आप तेज वाय पृथ्वी आकाशा तिन मैं पंच तत् घर वासा सतगुर शब्द रह रंग राता तज माया हौ मैं प्राता हे इहो मन भीजै शब्द पतीजै बिन नावै क्या टेक टकीजै अंतर चोर मुहै घर मंदर इन साकत दूत न जाता हे दुंदर दूत भूत पिहाले खिंचो तान करह बेताले शब्द सुरत बिन आवै जावै पत खोई आवत जाता हे कूड़ कलर तर भसमै ढेरी कूड़ कलर तन भसमै ढेरी बिन नावै कैसी पत तेरी बाधे मुक्त नाही जुगचारे जम कंकर काल पराता हे
जमदर बाधे मिले सजाई, किस अपराधी गत नहीं काई, करन पलाव करे बिल लावे, ज्यो कुंडी मीन पराता है, साकत फांसी पड़े इकेला, जम वस किया अंध दुहेला, राम नाम बिन मुक्त न सूझे, आज काल पच जाता है, सतगुर बाज न बेली कोई, एथे उथे राखा प्रभ सोई, राम नाम देवे कर कृपा, यों सल्ले सलल मिलाता है, भूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जादे मार्ग पाए, तेस गुर सेव सदा दिन राती, दुख पंजन संग सखाता है, गुर की भगत कर है क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश न जानी, सतगुर अलख कहो क्यों लखी है, जिस बक्से तिसे पछाता है, अंतर प्रेम प्राप्त दर्शन, गुरबाणी सो प्रीत सो परसन, अहनिस निर्मल ज्योत सुबाई, घट दीपक गुरमुख जाता है, भोजन ज्ञान महारस मीठा, जिन चाखिया तिन दर्शन दीठा, दर्शन देख मिले बैरागी, मन मनसा मार समाता है, सतगुर सेवै से प्रधाना, तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना, नानक हर जस हर जन की संगत दीजै, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है, मारू महला पहला, साचे साहिब सिरजन हारे, जिन तर चक्र धरे विचारे, आपे करता कर कर विखै, साचा वेपरवाहा है, वेकी वेकी जंतु पाए, दोय पंदी दोहराहा चलाए, गुर पूरे बिन मुक्त न होई, सच नाम जप लाहा है, पढ़ै मनमुख पर विद नहीं जाना, नाम न बूझै भरम भुलाना, लैके वड्डी देन उगाही, दुरमत कागल फाहा है, सिमरत शास्त्र पढ़ै पुराना, वाद वखाणै तत न जाना, बिन गुर पूरे तत न पाइय, सच सूचे सच राहा है, सब सा लाहे सुन सुन आखै, आपे दाना सच पराखै, जिन कौ नदर करे प्रभ अपनी, गुरमुख शब्द सलाहा है, सुन सुन आखै केती बाणी, सुन कहिए को अंत न जानी, जा को अलख लखाए आपे, अकाश कथा बुद्धता है, जन्मे कौवा जहवा धाए, सोह लड़े अज्ञानी गाए, जो जन्मे ते सर पर मरना, किरत पया सिर साहा है, संजोग विजोग मेरे प्रभ किए, सृष्ट उपाए दुखा सुख दिए, दुख सुख ही ते पए निराले, गुरमुख सील सुनाहा है, नीके साचे के वापारी, सच सौदा लै गुर विचारी, सच्चा वखर जिस तन पल्लै, शब्द सच्चै ओ माहा है, काची सौती च तोटा आवै, काची सौदी तोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभ भावै, पूंजी साबत रास सलामत, चूका जमका फाहा है, सब को बोलै आपन भाणै, मनमुख दूजै बोल न जानै, अंधले कीमत अंधली बोली, आए गया दुख ताहा है, दुख मैं जन्मै दुख मैं मरना, दुख न मिटै बिन गुर की सरना, दुखी उपजै दुखी बिनसै, क्या ले आया क्या ले जाहा है, सच्ची करनी गुर की सिरकारा, आवन जान नहीं जमतारा, डाल छोड़ तत मूल पराता, मन साचा ओ माहा है, हर के लोग नहीं जम मारै, ना दुख देखै पंथ करारै, राम नाम कटे अंतर पूजा, अवर न दूजा काहा है, ओढ़ न कथनै सिफत सजाई, ज्यों तुद भाव है रह रजाई, तरगह पैदे जान सुहेले, हुक्म सच्चे पात साहा है, क्या कहिए गुण कथे कनेरे, अंत न पावह वडे वडेरे,
नानक साच मिले पत रखहु, तू सिर साहा पात साहा ही। मारू महला पहला दखनी, काया नगर नगर गढ़ अंदर, साचा वासा पुर गगनंदर, अस्थिर थान सदा निर्मायल, आपे आप उपाइंदा, अंदर कोट छजे हट नाले, आपे लेवे वस्त संभाले, बजर कपाट जड़े जड़ जाने, गुर शब्दी खोल आइंदा, पीतर कोट गुफा कर जाई, नौ घर थापे हुक्म रजाई, दसवें पुरख अलेख अपारी, आपे अलख लखाइंदा, पौन पानी अग्नि इक वासा, आपे कीतो खेल तमासा, बल दी जल निवरै कृपा ते, आपे जल निध पाएदा, धरत उपाए धरी धर्मशाला, उत्पत परलो आप निराला, पवने खेल किया सब थाई, कला खिंच टहाएदा, भार अठारह मालन तेरी, चौर टुलै पवने लै फेरी, चंद सूरज दुए दीपक राखे, सस कर सूर समाएदा, पंखी पंच उडर नहीं धावह, सफल्यो बिरख अमृत फल पावह, गुरमुख सहज रवै गुण गावै, हर रस चोग चुगाएदा, झिलमिल छिलकै चंद न तारा, सूरज किरणा बिजुल गे नारा, सूरज किरणा बिजुल गै नारा, अकथि कथहो चेहन नहीं कोई, पूर रहया मन पाएदा, पसरी किरण जोत उजियाला, कर कर देखै आप दयाला, अनहद रुण चुनकार सदा धुन, निर्भउ कै घर वाइंदा, अनहद वाजै भ्रम भउ भाजै, सगल व्याप रहा प्रभ छाजै, सब तेरी तू गुरमुख जाता, दर सोहै गुण गाइंदा, आद निरंजन निर्मल सोई, अवर न जाना दूजा कोई, एकंकार वसै मन भावै, हौ मैं गर्भ गवाइंदा, अमृत पिया सतगुर दिया, अवर न जाना दूआ तिया, एको एक सो अपर अपरम, एको एक सो अपर परंपर, परख खजाने पाइंदा, ज्ञान ध्यान सच गहर गंभीरा, कोई न जाने तेरा चीरा, जेती है तेती तुझ जाचे, कर्म मिले सो पाइंदा, कर्म धर्म सच हाथ तुम्हारै, वे परवाह अखुट भंडार है, तू दयाल कृपाल सदा प्रभु, आपे मेल मिलाएंदा।

है तेती तुदे अंदर, देख आप बैस बिज मंदर, नानक साच कह बेनंती, हर दर्शन सुख पाईंदा। जेती है तेती तुदे अंदर, देख आप बैस बिज मंदर, नानक साच कह बेनंती, हर दर्शन सुख पाईंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जी, सतगुरु जी ने बख्शिश मेहरामत कीती है, अज दे दिहाड़े आपां अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ पढ़े हन, सरवण कीते हन, नाल कीते हन। गुरु कृपा करे जितनिया भी संगतां ने हाजरियां भरियां हन, सतगुरु जी सभना की हाजरी दर प्रवान कर लैन, दरों करों चढ़ दियां कला बख्शिश करके नवाजन। अगाध बोध बाणी पढ़दियां हुईयां बेअंत बेअंत भुलां दी खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

जरूर अपना हिस्सा पाओ। जिवें वीर जी ने दस्या ना, एक एक डालर विच भी बरकत है। पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ी आई इस स्थान नाल, ते अगे साडे बच्चियां दे बच्चे भी सारे कारजां विच गुरु आप खलोएगा। बीबियां भैणां सब नूं बेनती है, आओ अपनी थोड़ी थोड़ी जेबां जरूर ढिलियां करियो, क्योंकि ये दिता होया बाबे नानक ने कई हजार गुणा तुहानूं मोड़ना है। करियो कृपा जी।

जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदावै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिट कीता तिन्हां प्यारियां सुचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चिते आवे चितावन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत तो देख तेग पते बिरद की पैर पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाये खालसे जी के बोलबाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहु दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवां मत उची मत पत ते राखे आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन देदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शिश करो। हे निमाणियां दे मान सतगुरु नितानियां दे तान सतगुरु नियोटियां दी ओट दसों पातशाह की आत्मक जोत शब्द गुरु धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी का पावन पवित्र सुंदर बचन है लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए दे मां वाक अनुसार गरीब नवाज। अज आप जी ने कृपा कीती आप जी के हजूर सुभाग जोड़ी काका राहुल सिंह लाली सुपुत्र सरदार जैपिंदर सिंह लाली बीबी डेजी राणी अते बची मन रूप कौर संघेड़ा सुपुत्री सरदार मनजीत सिंह संघेड़ा बीबी सुमिंदर कौर संघेड़ा सच्चे पातशाह जी इस सुभाग जोड़ी दे आप जी के हजूर आनंद कारज होए गरीब नवाज। आप जी के पावन पवित्र दर घर की सेवा निभाउंदियां मर्यादा निभाउंदियां बेअंत बेअंत भुल्लां हुई आप जी ने खिमा कर देनियां अनजाण बच्चे समझ के

जो दिन है जो पुरब है जदों कुल संसार दे अंदर उस अकाल पुरख ने आप आके अवतार धारिया पहला बड़े देवी देवते पीर पैगंबर आए कोई शक नहीं पर अज दे दिहाड़े कौन आया आप अकाल पुरख सतगुरु साहब जी की बाणी कहती सतगुर नानक देव देव देवी सब त्यावै कोई सोलह कला कोई चार कला कोई एक कला संपूर्ण सी अज सर्व कला संपूर्ण बापू आया सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बनियाई प्रगट भई सगले जुगे अंतर गुरु नानक की पढ़िया तो मैं बेनती इस करके कर रहा जी सारे इस करके गाइए क्योंकि आप जी नूं बाणी आप जी पढ़ने वाले हो सारे नूं पता है जे सब मिलके आखण पाहे वड्डा ना होवै ना उन्हें घट जाना है तो ना उन्हें वड्डा हो जाना है जिड्डा है उड्डा ही है पर एक फर्क जरूर पै जाना है जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही उन्हों पातशाहियां बख्श दिंदा है मालक जिहड़ा उन्हों गाउंदा है उन्हों वड्डिया कर दिंदा है जिहड़ा उन्हों वड्डा कहिंदा है इस करके उस मालक की वड्याई गई है सारी संगत पढ़िओ जी

ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤ

Gianluca

0: ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾ
1: ਮਿਲੇ
0: ਆਵਾ ਚੰਦਰ ਕਾਗਜ
1: ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਗਦੀ ਕਰ

ਜੋ ਬੇਨਤੀ

मंत्र लक्षण है जो कि